0: एक नहीं आस की दूजे लगे जाए नानक आसक कांडिया साजी रहसमय चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए आस के होना के जिले के वरते सोई महला दूजा
1: सलाम जवाब दोवे करे मुंडो कुत्था जाए नानक दोवे कुड़ियां काई पाए पौड़ी
2: निहाली है।

0: ताकिश पहमान नानक जिस नो लगा तिस मिले लगा सो परवान भला दूजा
1: जो जी होय सो गए मुह का कह बाओ बीजे बेख मंगे अमृत बेख हुए न्याओ महला दूजा नाले आने दोस्ती कदे ना आवे रास जेहा जाने ते हो वरते बेखो को निर्जास वस्तु अंदर वसमावे दूजी होवे पास साहिब से ती हुकम न चले कहीं बने अरदा कूड़ कमाने कूड़ो होवे नानक सिफत विकास महला।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश

0: मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक के लिए अगले 6 महीने में ड्रोन रोधी प्रणाली स्थापित करेगी। राजस्थान में बीकानेर की सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कल ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: सरकार ने प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये वृद्धि राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव होंगे। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स, DRM 864 किलो हर्ट्स, FM 100.8 मेगा हर्ट्स, FM 100.9 मेगा हर्ट्स अति DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा का ये जलंधर केंद्र है। तुसी साड़ी प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। ज्ञान अमृत।

0: नारी सृष्टि दी सब तो उत्तम रचना है। जिड़ी कौम नारी दा सतिकार नहीं कर दी, वो छेती बर्बाद हो जांदी है।
1: हुने तुसी सुनिया अज दा ज्ञान अमृत। आओ हुन मिलके सरवन करते हैं भगती संगीत दा प्रोग्राम आराधना।

सखियां सीता जी को गौरी पूजन के लिए पुष्प वाटिका में ले आईं, जहां श्री राम को सीता के प्रथम दर्शन हुए। सीता ने भी श्री राम के श्यामल मनोहारी रूप को देखा कि तभी दोनों भाई वाटिका में उनकी आंखों से ओझल हो गए। वो चकित होकर चारों ओर देखने लगीं कि राजकुमार क्षण भर में ही कहां लोप हो गए। उसी समय दोनों भाई लता कुंज में से ऐसे प्रकट हुए जैसे बादलों का आवरण हटाकर चांद निकल आता है। दोनों भाइयों के शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभा पा रही हैं। कानों में सुंदर आभूषण, टेढ़ी भ्रुकुटी और घूंघर वाले बाल, रत्नारी आंखों और मुस्कान की शोभा मन को सहज ही मोह लेती है। ये मनोहारी दृश्य देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। तभी एक सखी ने सीता जी से ठिठोली की, पार्वती का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को ही जी भरकर क्यों नहीं देख लेती। सिर से पैर तक श्री राम का सुंदर रूप देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके सीता जी को अवसाद हो आया। शिव जी के धनुष की कठोरता स्मरण कर हृदय में श्री राम की मूर्ति बसाए बिसूरती सीता सखियों समेत

फौजी वीरा लई प्रोग्राम 1:15 बजे पेश कीता जावेगा। बाद दोपहर 2:30 बजे तुसी सुनोगे प्रोग्राम रंगली धरती। इस प्रोग्राम च अज तुसी सतनाम सिंह जुगरी वाला दे गीत सुनोगे। दूजी सभा च 4:02 बजे ते तुसी सुनोगे सदा बहार गीत। शाम 4:30 बजे तुसी श्री दरबार साहिब अमृतसर तो शबद कीर्तन दा सिद्धा प्रसारण सरवण करोगे। शाम 5:30 बजे तुसी सरवण करोगे गुरुवाणी विचार। दिहाती प्रोग्राम होवेगा जी शाम 6:30 बजे। इस च अज कम दियां गल्लां ते अज दे भाव बारे जानकारी दित्ती जावेगी।

शाम 7:45 थे, तुसी सुनोगी हिंदी वार्ता। इस प्रोग्राम च मेरी वाक्य वार्ता ते जानकारी तुहाडे नाल सांझी कीती जावेगी। रात 8 बजे तुसी सुनोगे अपना मन पसंदीदा प्रोग्राम ते साडा इवनिंग शो जिंदगी हसीन है। रात 9:15 प्रोग्राम स्पॉटलाइट पेश किया जाएगा ते रात 9:30 पेश किया जाएगा प्रोग्राम चर्चा का विषय। ये दोनों प्रोग्राम साड़ी दिल्ली केंद्र तो प्रसारित किए जाएंगे। इस दौरान ही रात 10:02 से तुसी सुनोगे अपना मनपसंदीदा प्रोग्राम तुहाडी फरमाइश। सो ऐसी अज रात तक प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्राम्स का वेरवा हुण तुसी साड़ी दिल्ली केंद्र तो सुनोगे संस्कृत समाचार।

0: पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: ऑस्ट्रेलिया देशस्य विदेश मंत्रिणा पेनी वोंगह इत्येषा ह्यः नवदिल्ल्यां प्रधानमंत्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह मिलितवती। श्रीमोदी रक्षा व्यापार प्रौद्योगिकी इत्यादिषु क्षेत्रेषु वर्धमानस्य भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक सामरिक सहभागित्वस्य विषयेपि आपूर्ति श्रृंखलायाः स्थितिस्थापकतायाः विषये च चर्चितवान्। प्रधानमंत्री अवदत् यत् भारत ऑस्ट्रेलिया देशौ स्वतंत्रं मुक्तं सुरक्षितं समृद्धं च हिंद प्रशांत क्षेत्रस्य कृते निरन्तरं कार्यं करिष्यतः। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः सुश्री वोंग इत्यनया सह 17वें विदेश मंत्रिणां फ्रेमवर्क संवादेत्यस्य सह अध्यक्षतां कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् ते हिंद प्रशांत प्रदेशे पश्चिम एशियायाः स्थितिम् अन्येषु क्षेत्रीय वैश्विक बहुपक्षीय विषयेषु च मतानाम् आदान प्रदानं कृतवन्तः। भाजपेति दलाध्यक्षः नितिन नवीनः ह्यः नवदिल्ल्याः दलस्य मुख्यालये नो बीजेपी इति उपक्रमस्य अन्तर्गतं 12 देशानाम् अभियानप्रमुखैः सह वार्तालापम् अकरोत्। श्रीनवीनः ब्राजील, जर्मनी, इण्डोनेशिया, मलेशिया, मॉरिसस, न्यूजीलैंड, सेशेल्स, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम इत्यादीनां देशानां प्रतिनिधीनां स्वागतम् अकरोत्। तथा च भाजपेति दलस्य यात्रायाः विचारधारायाः संघटनात्मक शक्तेः लोकसेवायाः प्रतिबद्धतायाः च विषये अवधानं प्रदत्तवान्। केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः दृढविश्वासं प्रकटितवान् यत् भारत कनाडा आर्थिक सहभागित्वस्य अग्रिमः अध्यायः विश्वासेन प्रेरितः भविष्यति, येन द्वयोः राष्ट्रयोः संयुक्त समृद्धिः भविष्यति। गतरात्रौ कनाडा देशस्य टोरेंटो नगरे राजनैतिक पुनरुत्थापनात् वाणिज्यिक वितरण पर्यन्तम् इति मंत्रिस्तरीय पूर्ण सम्मेलनस्य उद्घाटन सत्रं संबोधितवान् इति वार्ताः।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ दे ये आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। हुन पेश ने आज दिया मुख खबरा। केंद्र सरकार ने घुसपैठ अते होर कारणा करके जन सिख्या की तब्दीली दिया चुनौतियां नाल नजिठन ले एक उच्च पदरी कमेटी बनाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोना राही नशीले पदार्थां अते हथियारां दी तस्करी नूं रोकन ले अगले 6 महीनों के अंदर एंटी ड्रोन सिस्टम स्थापित करन दी प्रक्रिया विच है। पंजाब विच शहरी स्थानक संस्थावां दियां 103 नगर पालिकावां दियां चोणां ले पोलिंग कुछ थावां ते गड़बड़ी नूं छड के अमन अमान मुकम्मल। भारत ने चीन अते पाकिस्तान दे सांझे बयान विच केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर संबंधी बेलोड़ियां टिप्पणियां नूं स्पष्ट तौर ते रद्द कर दिता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दे 3 दिना सिक्किम दौरे दा अज दूजा दिन है। सिख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE दे भुगतान सिस्टम नूं बेहतर बनाउण लई जनतक खेतर दीआं 4 प्रमुख बैंकां दे सीनियर अधिकारियां नाल वेरवे सहित चर्चा कीती। फिरोजपुर काउंटर इंटेलिजेंस ने सरहद पारों गैरकानूनी हथियारों की तस्करी करने वाले मॉड्यूल का पर्दाफाश करदिआं एक सप्लायर नूं असली समेत गिरफ्तार कीता है। भारत ने वियतनाम विच एशियन अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप विच मर्दां दे फ्री स्टाइल वर्ग च सोने ते चांदी दे 2-2 ते कांसी दा एक तमगा जित्तिया है। देश दे उत्तरी अते केंद्रीय इलाके च जबरदस्त गर्मी ते लू दी मार हेठ ने। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 864 किलोहर्ट्स, FM 100.8 मेगाहर्ट्स, FM 100.9 मेगाहर्ट्स अते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। प्रोग्राम सोनी सवेर नू थोड़ा जहा इंतजार होर।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, अदाब, हसदा वसदा रहे तुहाडा परिवार। ते लो जी, नवी सवेर दे सोहणे वेले हुण वेला हो चुके है तुहाडे मन पसंदीदा प्रोग्राम सोहणी सवेर दा। ते सोहणे जे सफर च मैं तुहाडी दोस्त शुभिता रहांगी जी तुहाडे नाल। दोस्तों, कई बारी सवेर दा जड़ा वेला हुंदा ना, ऐसा हुंदा है कि अख तां खुल जांदी है पर मन हाले भी किते ना किते उलझिया जा रहिंदा है। किसे नूं काम दी चिंता है सवेरे सवेरे, किसे नूं घर दीआं जिम्मेवारियां दी चिंता है जी सवेरे, ते कोई बस यही सोच रहा हुंदा है कि अज दा दिन जड़ा ना उह चंगे तरीके नाल लंघ जावे। पर दोस्तों, कहिंदे ने ना कि दिन दी जिहड़ी शुरुआत है, जेकर वह दिल च शुकराने के भाव नाल होवे ना, तो मन च रब दा नाम होवे, तां फिर इंसान जड़ा ना वो अंदरों थोड़ा हौला जिहा महसूस करन लग पैंदा है। क्योंकि हर दिन साडे लई दोस्तों एक नवा मौका ही नहीं, सगों रब वल्लों मिली हुई एक होर नहमत भी हुंदा है। तो बस दोस्तों, इसे प्यारे जिहे अहसास दे नाल अगले एक घंटे असी बने रहना तुहाडे नाल, तुसी भी साडे नाल बने रहना है 8 बजे तक। प्रोग्राम सोहणी सवेर च होणगीआं बहुत सारियां गल्लां बातां, सुणांगे सोहणे सोहणे गीत तुहानूं सुणावांगे, ते कोशिश करांगे कि तुहाडी जिहड़ी इह सवेर है ना, इहनूं होर भी पॉजिटिव असी बना सकीए। तो फिर तुसी बने रहना जी साढ़े नाल अपने आकाशवाणी रेडियो के प्रोग्राम सोहणी सवेर च। सब तो पहला गीत सुनते हैं तो प्रोग्राम की करते हैं शुरुआत।

जावेद अली और कैलाश खेर दी आवाज़ तुसी सुन रहे सी। बहुत सोहणा जिहा गीत, और इस तरह के जिहड़े स्पिरिचुअल गीत हुंदे ने दोस्तो, जिहड़े साडी सोल साडी आत्मा नूं खुश कर दिंदे ने, उह वी जेकर सवेर दा वेला होवे ते इस तरह दे एंथुजियास्टिक ते पॉजिटिव गीत असीं सुन लईए तां फिर जिहड़ा दिन है उह होर सोहणा बन जांदा है। ठीक उसी तरह जिस तरह साडा इह प्रोग्राम है सोहणी सवेर। ते दोस्तो हुण वेला हो चुक्या अज दे शुभ विचार दा। कई बार जिंदगी च दोस्तों असी कुछ राहां नू वेखे बिना ही वेख के पहला ही यह सोच लैंदे आ कि नहीं, ए मेरे लिए नहीं बनिया, या फिर शायद हुण कुछ चंगा नहीं होना। पहला ही असी बहुत सारे थॉट्स जिहड़े ने ना अपने माइंड च लै आने आ। पर दोस्तों जिंदगी दी सब तो सोहणी गल पता की है कि रस्ते अक्सर उत्थे खुलदे ने जिथे असी उम्मीद ही छड्ड दिंदे हाँ, या फिर कई बार अजिहा भी हुंदा है कि असी जिथे कदी उम्मीद ही नहीं कीती हुंदी ओह वाले रस्ते साडे लई खुल जांदे ने। ते अज दा जिहड़ा शुभ विचार है उह वी कुछ इस तरह नाल ही है दोस्तो। कहिंदे ने कि जिंदगी च कदे भी उम्मीद नहीं छड्डनी चाहीदी, क्योंकि रब ओह रस्ते भी खोल दिंदा है जिन्हां बारे असी कदे सोचिया भी नहीं हुंदा। बिल्कुल दोस्तों, हर चीज़ अपने समय नाल मिलती है, कई बार देर जरूर हो जाती है, पर जेकर मन च विश्वास बनया रहे इस निरंकार ते इस रब ते, तां रास्ते अपने आप बनन लग पैंदे ने। इसे लई अपने सुपनिया ते भरोसा रखना है, मेहनत करते रहना है ते रब ते यकीन बनाए रखना है, क्योंकि कई बारी जो अज इम्पॉसिबल सानू लग रहा ना उही कल साडी सोहनी रियालिटी बन जाएगा। बस ए भरोसा रखना है, अरदास करते रहना है। इबादत च कहिंदे ने बहुत ताकत हुंदी है, इबादत कर, इबादत करन दे नाल गल बनदी है, किसे दी अज बनदी है ते किसे दी कल बनदी। ते आओ फिर मिलके इबादत करिए, सवेर दा सोहणा जिहा वेला है ते क्यों ना मिलके अरदास करिए सब दी चढ़दी कला दी। सतिंदर सरताज दी आवाज़ च तुसी भी सुनो एक गीत।

दुनिया ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: चश्मा कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, खाता है कूड़ा भी रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। प्रोग्राम चल रहे दोस्तों सोनी सवेर ते असी गल कर रहे सी नौ तपे दी। इस वेले नौ तपा दोस्तों जड़ा चल रहा है ते इस दौरान जड़ा है वो नौ दिन गर्मी जड़ी है वो अपने चरम ते हुंदी है ते 45 डिग्री दे आसपास जड़ा है 45 डिग्री सेल्सियस दे आसपास टेंपरेचर जड़ा है वो इस दौरान पहुँचता है ते इहदा सीधा असर साडी बॉडी ते पैंदा है। तेज़ धुप, लू जिहड़ी चल रही है या फिर जड़ा इन्ना ज़्यादा हाई टेंपरेचर है उहदे नाल थकावट, डीहाइड्रेशन ते होर भी कई सारे जिहड़े हीट स्ट्रोक दा जिहड़ा रिस्क है ना दोस्तों वो इस दौरान वध जांदा है। इस दे लई खान पान जिहड़ा साडा वो साडी जिहड़ी डेली रूटीन है लाइफ की उहदे च बहुत सारे चेंजेस जिहड़े ने हो जांदे ने। ठंडी तसीर वाले जिहड़े फ्रूट्स ने, ड्रिंक्स ने, वो साडी बॉडी किते ना किते अंदरों ते ठंडे रखते हैं ते नाल दे नाल सारा दिन जिहड़ा है वो सानू एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। पर पॉइंट दोस्तों इत्थे यह हैगा कि नौ तपे दे दौरान जिहड़े हैल्थ रिस्क ने उहनां बारे गल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिवें कि बॉडी टैंपरेचर वध जांदा है, इलैक्ट्रोलाइट जिहड़े ने उह इमबैलेंस हो जांदे ने, डीहाइड्रेट हो जांदी है बॉडी यानी कि पानी की कमी हुंदी है, चक्कर, कमजोरी, स्किन बर्निंग, हीट स्ट्रोक दा जिहड़ा खतरा है, BP जिहड़ा है, ब्लड प्रेशर दे जिहड़े मरीज ने उहनां दे BP च उतार चढ़ाव जिहड़ा हुंदा है, या फिर जिहड़े डाइजेस्टिव सिस्टम दे रिलेटिड जिहड़े पेट दी समस्या जिहड़ी है वो इन्हां दिनां च बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लोकां नूं फेस करदे ने लोकी। पर गलती उत्थे हो जांदी है जदों असीं कोई अजिहियां चीज़ां दा जिहड़ा सेवन करदे हां जिहदे करके इहदे च रिस्क जिहड़ा है वह होर वध जांदा, जिवें कि स्पाइसी फूड कई बार असीं खाने हां, जंक फूड या फिर चाह कॉफी दी बहुत ज़्यादा जिहड़ा है उहदा असीं सेवन करदे हां। ते दोस्तो इत्थे तक कि कोल्ड ड्रिंक्स जिहड़ियां ने यानी कि जिहड़ी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ने वह भी एक्सपर्ट्स जिहड़े ने वह मना करदे ने ते नाल दे नाल हाईली जिहड़े सोडियम फूड ने इनटेक उहदे वह भी मना कीते जांदे ने ते बहुत ज़्यादा जिहड़ा बर्फ वालियां चीज़ां ने उहनां नूं भी मना कीता जांदा है। हुण सवाल इत्थे यह हैगा कि नौ तपा जिहड़ा वो चल रहा है तो इस दौरान किन्ना चीज़ों का सेवन जिहड़ा वह करना चाहिए है। तो दोस्तों बॉडी नूं कूल रखने के लिए साढ़े को नैचुरली बहुत सारे फ्रूट्स ने, इस वेले तरबूज हैगा जी, खरबूजा है, साढ़े को खीरा है वह खा सकते हैं, असी बहुत सारे अजिहे ड्रिंक्स ने जिहड़े नारियल पानी असी पी सकते हैं जिहदे करके साडी बॉडी जिहड़ी है वह हाइड्रेट भी रहेगी तो असी

जी वी फील एनर्जेटिक, वी फील करांगे गन्ने दा रस है। फिर तुसी सत्तू दा शरबत पी सकदे हो, बेल दा शरबत पी सकदे हो, नींबू पानी पी सकदे हो, विच इज़ वेरी गुड फॉर साड़ी हेल्थ लई। बहुत ज़्यादा जड़ा है वो बेनिफिट बेनिफिशियल रहिंदा है। तो इन्हां चीज़ों का सेवन करके नौ तपे तो बचा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों कुछ भी कर लवो हेल्थ इज़ वेल्थ, इस गल नूं असी नहीं भुलना है। साड़ी सेहत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे काम बाद चो ने, पहला सेहत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ अजिहा जिहा मैसेज जड़ा है वो गुरदास मान जी भी दे रहे हैं, लो जी तुसे भी सुनो इस गीत दे राही।

अमरिंदर गिल दी आवाज़ से तुसी इंजॉय कर रहे से दोस्तों, सोहना जा गीत। दोस्तों कई बार कुछ खबरां जिहड़ियां ने ना, वो सिर्फ खबरां नहीं होंदियां, वो इंसानियत सोच ते समाज लई कुछ चंगा करन दी प्रेरणा भी बन जांदियां ने। तुहाडे नाल एक खबर जिहड़ी है वो शेयर करन लगे हाँ कि अज जिहड़ा है वो एक बड़ी खबर मैं बहुत सोहनी जी एक रीड कर रही सी सोशल मीडिया से, तो सोचा थोड़े नाल भी शेयर करा। महाराष्ट्र दी दस्या जाता है कि नांदेड़ जिले च, दोस्तों एक खबर सामने आई है तो आई होप तुसी भी इस खबर नू इस ते विचार करोगे कि एक नौजवान सी जिहड़ा दोस्तों उत्थे, उन्हें अपनी विआह नू सिर्फ खुशियां तक सीमित नहीं रख्या, सगों उस खुशी नू समाज सेवा नाल भी जोड़ दिता। होया है कि विआह च आए जिहड़े लगभग 3500 जिहड़े गेस्ट सी उन्हां दे विआह च आए, उन्हां नू असा रिटर्न गिफ्ट, देखो दोस्तों अक्सर असीं देखिए कि विआहां शादियां च रिटर्न गिफ्ट जिहड़े ने कई बार बहुत बहुत महंगे महंगे रिटर्न गिफ्ट दिते जांदे ने, पर तुसीं हैरान हो जाओगे जो इस शख्स ने रिटर्न गिफ्ट दिता, उन्हें रिटर्न गिफ्ट देने की बजाय ना दोस्तों एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवा दी। जिन्हें भी गेस्ट आए से हर व्यक्ति नू 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर दिता गया, तो यह सोच जिहड़ी है वो इसलिए उन्हों आई क्योंकि पिंड दे कई लोग किसान ते मजदूर सन उन्हां दे, ते जिथे खेतों च काम करदिया कई बार हादसों का खतरा बनया रहिंदा सी उन्हां लई। ते दोस्तों सच पुछो तां खुशी कहिंदे ने उही हुंदी है जो सिर्फ अपने लई नहीं दूजियां दी जिंदगी लई भी सहारा बन जावे। ठीक इस तरह जिस तरह इस शख्स दे वल्लों जिहड़ा है वो महाराष्ट्र

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन अफवाहों को खारिज किया जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई थी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नवलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
4: मैं आज

0: देश के सामने एक चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
1: इस समिति के कार्यों के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
2: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा, जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर कार्य हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर श्री गोयल ने कहा कि भारत अगले 3 दशकों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में SIR प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। एक रिपोर्ट।
3: याचिकाओं में SIR प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि SIR प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326, जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियों के दायरे से बाहर थी। याचिकाकर्ताओं की ये भी दलील थी कि SIR प्रक्रिया ने बड़ी संख्या में गरीब और विस्थापित लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR प्रक्रिया से प्रभावित मतदाताओं के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देने और कठिनाई को कम करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने 1983 में बिहार में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए कहा है कि इस घटना की क्रूरता न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देती है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कल कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय दोनों ने सही कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की सहानुभूति या नरमी की गुंजाइश नहीं है। न्यायालय ने कहा कि घटना मार्च 1983 में मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में हुई थी, जहां कम से कम 58 लोगों की भीड़ ने चंद्रशेखर चौधरी के घर में आग लगा दी, जिसके बाद 5 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई और कई लोग घायल हो गए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग URL पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
4: CBSE बोर्ड ने कहा है कि CBSE.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है जिसमें सैंपल डाटा होता है, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह

0: आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। मार्च में नासा ने वर्ष 2032 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर परमाणु और सौर ऊर्जा से संचालित एक स्थायी अड्डा बनाने के लिए $20 अरब के कार्यक्रम की घोषणा की थी। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन को इन मशीनों का निर्माण करने के लिए चुना गया है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: कोलकाता की एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की हिरासत में भेज दिया है। इन आरोपियों को केंद्रीय एजेंसी द्वारा सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। भारतीय वायुसेना ने अधिकारी काडर के तकनीकी शाखा में भर्ती के लिए अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा GATE के अंकों के आधार पर चयन करने की योजना बनाई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि GATE के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को वायुसेना चयन बोर्ड में परीक्षा के लिए सीधे चयनित किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली 10 डब्बों वाली DEMU रेलगाड़ी को चलाने की स्वीकृति दे दी है। ये निर्णय रेलवे क्षेत्र में हरित और टिकाऊ परिवहन को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइड्रोजन रेलगाड़ी के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कृष्णकांत शर्मा।
3: यह रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। इसमें 2 ड्राइवर पावर कार और 8 पैसेंजर कोच शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 2500 यात्रियों की है। इसकी कुल विद्युत क्षमता 1200 किलोवाट है। यह ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है। इसकी परिचालन गति 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक डिजिटल डिस्प्ले, ऑटोमेटिक दरवाजे और एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की भूमिका की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध के कारण उसे तटस्थ नहीं माना जा सकता। श्री ग्राहम ने दावा किया कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल के बारे में पाकिस्तानी नेताओं की टिप्पणियां चिंताजनक हैं। ये टिप्पणियां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में अब्राहम समझौते में पाकिस्तान के शामिल होने से इनकार के बाद आई हैं। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका व्यक्त की है। वहीं केरलम में मानसून 1 या 2 दिन की देरी से आ सकता है। IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर सिमट गई। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल राजस्थान के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं।

0: और लीजिए अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने क्वाड समूह की एकजुटता और सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए सख्ती को सुर्खियों में जगह दी है। साथ ही कई स्थानीय मुद्दे भी मुख्य पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किए गए हैं। वीर अर्जुन की सुर्खी है, क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ाएगा निगरानी। पत्र ने भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्रियों की तस्वीरों को भी समाचार के साथ प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने घुसपैठ से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन संबंधी अमित शाह के ऐलान को सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, धर्मशाला नहीं है भारत। पत्र लिखता है, जनसांख्यिकी संरचना बदल जाने से स्थानीय समुदायों में ये भावना बढ़ रही है कि घुसपैठिए सरकारी योजनाओं और राजनीतिक संरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जिससे भाषा और भूमि को लेकर तनाव बढ़ रहा है। जनसत्ता ने दिल्ली में सीएनजी के दाम 2 रुपये प्रति किलोग्राम और बढ़ाए जाने को पहली खबर बनाया है। अमर उजाला ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर जगह दी है, जबकि दैनिक ट्रिब्यून ने दिल्ली रेस क्लब को राहत न मिलने और जिमखाना पर सरकार के कुछ नर्म रुख को पहली खबर बनाया है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। CBSE ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन अफवाहों को खारिज किया है जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया। महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Center forms high-level committee to study demographic change caused by infiltration and other reasons. Supreme Court to deliver its verdict today on petitions challenging special intensive revision of electoral rules. CBSE rejects claims circulating on social media about breach of its on-screen marking system, saying it was only testing site and not actual platform. IMD issues red alert for severe heat wave conditions in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbha today. NASA releases details of robotic landers, hopping drones and vehicles it aims to send to Moon as part of its plan to build lunar base. And in IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru storm into final beating Gujarat Titans by 92 runs in qualifier 1 at Dharamshala. The centre has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic changes caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar. Census Commissioner along with former IAS Officer Durga Shankar Mishra, former IPS officer Balaji Srivastava and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary, Foreigners 1 in Home Ministry, will serve as the member secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty, but also to national security, law and order, profound changes in social structure, and the preservation of tribal society. A report.
3: The high-level committee will conduct a comprehensive assessment of demographic changes occurring across India due to illegal immigration and other unnatural causes. It will also analyze patterns of abnormal population shift at the levels of religious and social communities and will present a planned and time-bound solution for the same. Prime Minister Narendra Modi, in his Independence Day speech from Red Fort last year, had announced about the high-level committee on demographic change.

0: titled India First Can Converge with America First, writes that against the backdrop of an uneasy phase in India-US relations over the past year or so, US Secretary Marco Rubio's visit to India signaled reassurance to New Delhi that Washington remains committed to a long-term strategic partnership. During his joint press conference with Rubio, Indian Foreign Minister Jaishankar acknowledged that the Trump administration has been forthright about pursuing an America First policy and said that Delhi too is guided by an India-first approach. Convergence of interests may sustain cooperation, but India's standing in a fractured world will ultimately rest on the strength it builds at home, the paper concludes. And with that, it's back to you, Pramod.
1: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Center forms high-level committee to study demographic change caused by infiltration and other reasons. Supreme Court to deliver its verdict today on petitions challenging special intensive revision of electoral rolls. CBSC rejects claims circulating on social media about breach of its on-screen marking system, saying it was only testing site and not actual platform. IMD issues red alert for severe heatwave conditions in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbha today. And in IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru storm into final, beating Gujarat Titans by 92 runs in qualifier 1 at Dharamshala. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चुनावियां खबरां। केंद्र सरकार ने घुसपैठ ते होर कारण करके जनसंख्यकी तब्दीली दीआं चुनौतीआं नाल निपटण लई इक उच्च पद्धरी कमेटी दा गठन कीता है। सुप्रीम कोर्ट ने चोण कमिश्नर वालों वोटर सूचियां की विशेष तीबर सोध SIR की वैधता चुनौती देने वाली पटीशन से अज अपना फैसला सुनाएगी। CBSE ने स्पष्ट किया कि उत्तर पुस्तिकावां के मुलांकण लई वरते जांदे इस ते ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम विच कोई सुरक्षा उलंघना नहीं हुई। पंजाब च शहरी स्थानिक संस्थावां लई कल हुईआं चोणां च लगभग 64% पोलिंग दर्ज की गई है। IPL क्रिकेट में बीती रात पहले क्वालीफायर मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स 92 हरा के फाइनल विच जगह बना ली है। हुण खबरां विस्थार नाल। केंद्र सरकार ने घुसपैठ ते होर कारण करके जनसंख्यकी तब्दीली दीआं चुनौतीआं नाल निपटण लई इक उच्च पद्धरी कमेटी बनाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट विच ऐलान किया कि कमेटी की प्रधानगी सुप्रीम कोर्ट के सबक जज प्रकाश प्रभाकर न्यौलकर करनगे। जनगणना कमिश्नर के नाल साबका IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, साबका IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉक्टर शमिका रवि नूं कमेटी के मैंबर नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में एक जॉइंट सकत्र मैंबर सकत्र वजों काम करनगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल लाल किले तो अपने सुतंत्रता दिवस भाषण में जनसंख्या तब्दीली बारे उच्च पदरी कमेटी के गठन का ऐलान किया।
3: मैं आज देश के सामने एक चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
2: श्री अमित शाह ने कहा कि जनसंख्या तब्दीली एक गंभीर मुद्दा है जो न सिर्फ देश की प्रभुसत्ता सगों राष्ट्रीय सुरक्षा कानून व्यवस्था समाजिक ढांचे विच डूंघियां तब्दीलियां अते आदिवासी भाईचारियां दी सुरक्षा नाल संबंधित है। गृहमंत्री ने कहा कि कमेटी गैर कानूनी प्रवास अते होर गैर कुदरती कारणां करके भारत विच जनसंख्या च होण वालियां तब्दीलियां दा व्यापक मुलांकण करेगी। सुप्रीम कोर्ट चोण कमिशन वालों वोटर सूचियां की विशेष गहन सोध SIR की वैधता चुनौती देने वाली पटीशनों पर अज अपना फैसला सुनाएगी। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमालिया बागची की बेंच ने मामले की सुनवाई तो बाद अपना फैसला राखवा रख लिया। पटीशनों में SIR प्रक्रिया की वैधता चुनौती दी गई है तो दलील दी गई है कि संविधान की धारा 326 लोक प्रतिनिधिता कानून 1950 इस दिन बनाए गए नियमों तहत चोण कमिशन दिखाई गई शक्तियों तो बाहर है। पटीशनर ने यह दलील भी दी है कि ਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तों वधा के 30 मई 2026 कर दिती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी ले 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज कराओ।
1: हेलो,
2: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाए। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
3: अजय ही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
4: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। प्रोग्राम पेश करन जा रहे हैं जी महक पंजाब दी। पंजाबी फिल्म म्यूजिक ते इस प्रोग्राम च सब तो पहला गीत तुहानू सुनान जा रहे हैं फिल्म केरी ऑन जट्टा जो गिप्पी गरेवाल दा गाया गीत। तुसी भी करो इंजॉय।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज थी। ये आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। प्रोग्राम चल रहा है महक पंजाब दी। तो इस प्रोग्राम च अगला गीत तो हानू सुनान जा रहे हैं फिल्म असानू मान वतना दा। इस फिल्म चो हरभजन सिंह ते सुनिधि चौहान दा गाया गीत। तुसी भी करो इंजॉय।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख हुण 20 मई तो वधा के 30 मई 2026 कर दिती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। प्रोग्राम चल रहे जी महक पंजाब दी पंजाबी फिल्म म्यूजिक ते इस प्रोग्राम च आखिरी गीत सुनान जा रहे हैं तुहानू फिल्म स्माइल चू दिलजीत दोसांझ दा गाया गीत। लो जी करो इंजॉय।

हुने तुसी सुन रहे सी शास्त्रीय संगीत का प्रोग्राम सुर साधना। इस च तुसी कलाकार डॉक्टर वनीता सेन होना वालों सितार वादन ते राग ललित सुनिया। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। हुन पेश करन जा रहे प्रोग्राम NCERT वालों स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग।

0: शबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। आज को ही मौका बना लीजिए।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से। देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। वो लिखते हैं,
3: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार। आज उमंग कार्यक्रम में दो बहुत ही सुंदर, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रसारित किए गए। पेड़ की बात शीर्षक से जगदीश चंद्र बसु पर केंद्रित कार्यक्रम ने संवाद के माध्यम से उनके कार्यों, उपलब्धियों, प्रयासों और विज्ञान जगत में उनके अभूतपूर्व योगदान को बहुत सरलता से चर्चित किया। योगेश ठाकुर जी आगे लिखते हैं,
2: ये कार्यक्रम बच्चों को बसु जी के कार्यों के बारे में एक संक्षिप्त झलक प्रदान करता है। भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल पर आधारित कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद और मनोरंजक था। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरला ठकराल के द्वारा प्राप्त की गई अभूतपूर्व सफलता की गाथा का पता चलता है। इतने सुंदर कार्यक्रम को श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
3: योगेश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर प्रतिक्रिया देने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का।
2: चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा
3: और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी,
2: धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओ, आपका हम आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारे कार्यक्रमों की इस श्रृंखला को सराहा है,
3: क्योंकि इस श्रृंखला में आपके लिए हम लेकर आते हैं ढेर सारी मनोरंजक और रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी, इस सप्ताह हम क्या जानकारी साझा करने जा रहे हैं, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
2: अजीत जी, इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे दुनिया के कुछ प्रसिद्ध फूलों पर।
3: जी मुझे याद आया, इसी श्रृंखला में हम भारत के कुछ प्रसिद्ध फूलों की चर्चा भी तो कर चुके हैं।
2: बिल्कुल,
3: तो आज किस फूल की चर्चा की जाए?
2: अजीत जी, आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध फूल चेरी ब्लॉसम की।
3: तो क्यों ना शुरुआत की जाए आपसे।
2: जी श्रोताओं, चेरी ब्लॉसम दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फूलों में से एक है। इसका मूल है जापान, यानी इसकी उत्पत्ति जापान से मानी जाती है। जापानी भाषा में इसे सुकुरा कहा जाता है। यह फूल जापान की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान माना जाता है।
3: जी विमलेश जी, ठीक वैसे ही ना जैसे भारत की राष्ट्रीय पहचान फूलों के संदर्भ में कमल है।
2: बिल्कुल सही। जब ये फूल खिलते हैं तो लगभग पूरा देश गुलाबी और सफेद रंगों की मनमोहक छटा से भर जाता है। पूरा वातावरण बेहद खूबसूरत हो जाता है।

0: इसके खिलने के समय में बहुत से पर्यटक खास तौर से जापान आते हैं।
1: विमलेश जी, आपने इन फूलों के खिलने के बारे में कहा,
0: जी
1: तो ये हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे कि चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने का समय कब होता है।
0: अजीत जी, चेरी ब्लॉसम के फूल सामान्यतः मार्च और अप्रैल माह के बीच वसंत ऋतु में खिलते हैं। हालांकि स्थान और तापमान के अनुसार इसके खिलने के समय में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है।
1: विमलेश जी, एक और बेहद रोचक बात मैंने इन फूलों के विषय में पढ़ी थी, और वो ये कि चेरी ब्लॉसम के पेड़ों पर इस मौसम में पहले फूल खिलते हैं, बाद में पत्तियां निकलती हैं।
0: जी बिल्कुल सही, और इसके कारण पेड़ पूरी तरह से फूलों से ढका हुआ दिखाई देता है। श्रोताओं, आपको बता दें कि जापान में चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने के समय त्योहार जैसा माहौल होता है। इस समय जापान में एक विशेष उत्सव मनाया जाता है जिसे हनामी कहते हैं। अजीत जी, अब आपकी बारी।
1: जी श्रोताओं, हनामी को चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी कहा जाता है।
0: जी
1: आइए जानते हैं कि इस उत्सव के दौरान वहाँ लोग क्या करते हैं।
0: इस समय शहरों, गांवों और कस्बों में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें चित्रकारी, गीत संगीत और जापानी संस्कृति की झांकियां दिखाई देती हैं। लेकिन हनामी परंपरा की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि
1: और वो ये है कि इस समय लोग चेरी ब्लॉसम पेड़ों के नीचे बैठकर परिवार, मित्रों और खासकर बच्चों और बुजुर्गों के साथ समय बिताते हैं।
0: जी
1: वे एक साथ बैठकर चेरी ब्लॉसम फूलों की अनोखी छटा का आनंद लेते हैं और प्रकृति को धन्यवाद देते हैं।
0: जी, दूर दूर शहरों में रहने वाले परिवार के लोग इस समय एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं
1: जी
0: और स्वादिष्ट भोजन करते हैं, जिनमें विशेष हैं सकुरा मोची, ये मीठे चावल का केक होता है।
1: और दूसरा व्यंजन है डांगो, जिन्हें हनामी डांगो भी कहते हैं। ये पिसे हुए चावल के बने हुए गोल आकार के पकवान होते हैं। एक और व्यंजन है खास, उसका नाम है टेम्पुरा।
0: जी
1: इसमें तली हुई सब्जियां और मिठाई और विशेष जापानी चाय परोसी जाती है।
0: ऐसा नहीं है कि चेरी के फूल सिर्फ जापान में ही हैं। इन फूलों को विभिन्न देशों ने अपनाया, जैसे कोरिया, चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। इन देशों ने जापान से इसकी पौध को लेकर अपने देशों में विकसित किया है।
1: एक और खास बात आपको बता दें कि चेरी ब्लॉसम के फूल बहुत कम समय के मेहमान होते हैं।
0: जी
1: ये एक से दो सप्ताह तक ही अपनी पूरी सुंदरता में रहते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। एक और खास बात आपको बता दें श्रोताओं कि चेरी ब्लॉसम वाले पेड़ों में जो चेरी के फल लगते हैं ना, वो बहुत छोटे और खट्टे होते हैं। इन पेड़ों में वो चेरी के फल नहीं लगते जो सामान्य तौर पर खाए जाते हैं।
0: खाने वाले चेरी के फलों के पेड़ अलग होते हैं। दरअसल चेरी ब्लॉसम के पेड़ सजावटी पेड़ माने जाते हैं। इनकी प्रजाति चेरी फल वाले पेड़ की प्रजाति से अलग है।
1: जी
0: इनका उद्देश्य सिर्फ सफेद और गुलाबी रंगों की अद्भुत छटा को बिखेरना है।
1: और इन फूलों के द्वारा ये संदेश मिलता है कि जीवन भी क्षणिक है, इसीलिए जब तक जीवन है इसे हम सुंदरता से बिताएं और समय का मूल्य समझें।
0: जी
1: शायद चेरी ब्लॉसम फूलों के हनामी उत्सव का ही प्रभाव है कि जापान में सौंदर्य और कला पर बड़ा जोर दिया जाता है, और हाँ, वहाँ समय की बड़ी प्रतिबद्धता है।
0: जी बिल्कुल। तो श्रोताओ, अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
1: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं।
1: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी आप अपने संदेश और हमारे प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ,
0: आप एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे कार्यक्रमों की, सुनते हैं कार्यक्रम।
1: हमारा पहला कार्यक्रम है वी आर गोइंग टू द जू, सिंगिंग द पोएम श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत इस गीत में मजेदार ढंग से बच्चों की चिड़ियाघर की यात्रा का वर्णन है। पशु पक्षियों की आवाजों को शामिल करके गीत को और भी अधिक रोचक बनाया गया है।
2: चिल्ड्रन, हैव यू एवर विजिटेड अ जू?
3: अ जू?
2: यस, अ जू।
3: Oh yes.
2: All right. So tell me, what do you see in a zoo?
3: Tiger. Lion.
2: Yes.
3: Monkey. Birds of different kind.
2: Very nice.
3: Camel. Giraffe. And so on.
2: Oh wow. So, here is a child like you. Who wants to go to a zoo? Now, let's recite this poem. And you all repeat after me. Ready?
3: Ready!
2: The poem goes like this. We are going to the

0: Dear friends, you have just heard the sounds of different animals in this song. Now, listen to the sounds again and try to identify them by yourself. This was elephant. This was monkey. And this was tiger. This was polar bear. And this was skunk. And this was kangaroo. And friends, do you know that pets and animals are very important part of our lives and the environment as well? But how? Talk to your elders and teachers.
1: अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम और अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह।
0: इस कार्यक्रम में बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह की वीर गाथा प्रस्तुत की गई है और जानकारी दी गई है कि कैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उसने अंग्रेजी शासन से लोहा लिया और देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में अपना बलिदान दिया।
1: जी,
2: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
3: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।
4: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है। आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सकें।
5: वीर जोरावर की
6: जय!
5: वीर जोरावर की
6: जय!
5: जय जेरापुर, जय भारत!
6: जय जेरापुर, जय भारत!
3: राजा जोरावर सिंह, हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत जेरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा, जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।
7: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
3: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें यह जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी, क्योंकि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे और दूसरा अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबला

0: Jolamet! Good home! Tum charo taraf se gir chuke ho.
1: Ye kya hai?
0: You are under arrest.
1: एक सोते हुए निहत्थे इंसान को आधी रात में ऐसे कायरों की तरह गिरफ्तार करते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? हिम्मत है तो हमसे लड़कर दिखाओ, आओ सामने।
0: बाउट हो गई तुम्हारी बहादुरी। फौजियो,
2: हुजूर,
0: बांधो इस बच्चे को जंजीर से।
2: जी।
3: छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाओ मुझे, मुझसे हाथ हटाओ। मैंने कहा छोड़ो मुझे, हटो यहाँ से।
0: शाबाश, शाबाश, सारल जंग, मैं खुश हुआ। तुम्हें मोटा इनाम दिलवाऊंगा।
4: हुजूर।
1: अच्छा, तो ये सब इसकी कारस्तानी है। एक बुजदिल ही दूसरे बुजदिल का साथ दे सकता है। लानत है तुम पर सालार जंग, लानत है। लालच में तुम इतने गिर जाओगे हमने सोचा ना था।
0: फौजियो, ले चलो इसको।
3: छोड़ो मुझे,
0: चलो,
3: हाथ उठाओ, छोड़ो मुझे।
5: बाद में अंग्रेजी फौज ने जोरावर पर बहुत अत्याचार किए। उनकी सैनिक तैयारी के बारे में पूछा गया, उनसे क्रांतिकारियों के नाम और ठिकाने पूछे गए, तरह तरह के लालच भी दिए गए, लेकिन वो जरा भी कमजोर नहीं पड़े और बार बार यही कहते रहे कि मातृभूमि से विश्वासघात नहीं कर सकते, चाहे जान ही क्यों ना गंवानी पड़े।
6: जोरावर से सारे राज उगलवाने के लिए थक हार कर कर्नल मेटोस टेलर नाम के एक नए अफसर को नियुक्त किया गया, लेकिन वो जितना ही सख्त था उतना ही दोस्ताना मिजाज का भी था। उसके मन में जोरावर के प्रति हमदर्दी थी। वो और जोरावर जल्द दोस्त बन गए और जोरावर उसे प्यार से अप्पा कहने लगे।
7: देखो जोरावर, अगर तुम प्यार से बचाओगे तो तुम्हें सजा की जगह आम माफी मिल जाएगी और मैं रेजिडेंसी से कहकर तुम्हें मालामाल करवा दूंगा।
1: अप्पा, ये नहीं हो सकता।
7: देखो देखो, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, बात मान लो, मैं तुम्हें कोच नहीं होने दूंगा।
1: ये नामुमकिन है।
7: Why?
1: हमें माफ कीजिए, हम अपनी रियासत और मुल्क दोनों से दगा नहीं कर सकते। हम देशद्रोह नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे।
7: yeah.
1: अप्पा साहब, अब हम मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमें जो भी सजा होगी अब हमें मंजूर है।
7: तो नहीं मानोगे। देखो देखो, आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा हो सकती है तुम्हें। ये सजा,
1: अप्पा साहब, हमारी बस एक विनती है कि हमें फांसी पर मत चढ़ाइएगा। हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके लिए हमें शर्म आए। हमने जो किया हमें उस पर गर्व है। कैद, फांसी या काला पानी, इनमें से कोई भी इतना भयंकर नहीं जितना कि विश्वासघात है। इसलिए हमें फांसी के बजाय तोप से बांधकर उड़ा दीजिएगा। हम कुछ नहीं कहेंगे और जरा भी नहीं डरेंगे, जरा भी नहीं।
7: एक्चुअली यू आर अ फूल।
5: जोरावर की ये बात सुनकर कर्नल टेलर का दिल भी सिहर उठा। बाद में उनकी गुजारिश न मानकर जोरावर को काला पानी की सजा सुनाई गई।
6: काला पानी की सजा?
5: हाँ, काला पानी की सजा। भारत की भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार का एक द्वीप है, जहां अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देने के लिए एक जेल बनाई थी।
6: जोरावर को भी अंग्रेज सैनिक नाव से काला पानी की जेल ले जाने लगे।

0: और समुद्र में बीच रास्ते जोरावर ने एक अंग्रेज पहरेदार से रिवॉल्वर छीन ली।
1: काले पानी की सजा से मौत को बेहतर समझता हूं मैं। भारत माँ का बहादुर बेटा हूं। इस सजा को मेरी रियासत का सामान्य सा व्यक्ति भी नहीं पसंद करेगा। फिर मैं तो राजा हूं।
2: एक छोटी सी रियासत के छोटी उम्र के राजा ने देश के लिए बड़ा काम कर दिखाया और मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत को गले लगाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया।
3: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
5: हुण तुसी सुन रहे से NCERT वलों स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। हुण पेश ने अज दियां मुख खबरां।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया लड़ीवार नाटक होया।

0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज दे ए आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। प्रोग्राम चल रहे जी हलो फरमाइश आओ जानते हैं इस प्रोग्राम च सब तो पहली फरमाइश केड़े कॉलर दोस्त लेके आए ने। हलो हलो
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्कार जी
1: सत श्री अकाल मैम।
0: सत श्री अकाल जी हाँ जी
1: मैम आवाज थोड़ी थोड़ी आ रही है।
0: हाँ जी कौन बोल रहे ने जी?
1: मैं जी कृष्ण सिंह बोल रहा जी पिंड शतीर आला जिला फाजिलका जी।
0: ठीक है जी बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा साडे इस
1: बहुत
0: प्रोग्राम च।
1: धन्यवाद जी थोड़ा जी।
0: ठीक है जी फिर आज केड़ा गीत सुनोगे?
1: देश प्रेमियों सुना दो जी आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों।
0: ठीक है जी बहुत सोहने सुनेहे दे नाल मोहम्मद रफी दी आवाज़ च गीत सुनना चाहते तुसी। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने लई
1: धन्यवाद मैम।
0: धन्यवाद जी। मोहम्मद रफी दी आवाज़ च देश प्रेमी फिल्म दा गीत सुन

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां

0: जिन्ना कॉल्स असी अटेंड कर सके उन्नी अटेंड करिए।
1: और मैडम जी आपने तो अटेंड करनी है, पर हमें श्रोताओं को तो थोड़ा समझना चाहिए ना।
0: बिल्कुल जी, बिल्कुल
1: आ तो गलती तो हमारी है लोगों की।
0: बिल्कुल जी। पर जिहड़ी क्रेज है ना रेडियो नूं लैके, वो भी बहुत ज्यादा है, ते असी ते यही कह सकते हैं कि सारिया नूं वारी मिलनी चाहीदी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी।
0: हाँ जी
1: कई कई कई कई बंदा तो है, मतलब 40 40 साल सुनता ना हो गया, और इन फोन है लगे को नहीं लोगों को।
0: अच्छा जी, तो
1: कई ये है जिसका मतलब आज ही मिला लियो, कल ही मिला लियो, चाहे माँ 5 दिन 6 दिन तो थे। एक काम करो, नोट करे करो भी, तेरा जो परसों फोन लग गया सी, आज तेरा फोन असी नहीं लेना, बस इन्ना कह के कट दिया करो,
0: ठीक है
1: नाराज
0: जी,
1: होता हूँ।
0: डन जी, डन डन। थोड़ा सजेशन, थोड़ी फीडबैक असी नोट कर लिए, अगे तो असी कोशिश करांगे कि जिन्हां दी ज़्यादा टर्न आ रही है उन्होंने दोबारा ना लईए।
1: बिल्कुल जी, खुद
0: डन डन,
1: शुरुआत नहीं चाहिए जी।
0: ठीक है जी। हाँ
1: एक
0: जी
1: चीज सवेरे आ सोनी सवेर प्रोग्राम दियो भी, वहां खरबूजा के ऊपर थे, बड़ी बढ़िया जानकारी दी दी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, फिर
1: खरबूजा
0: तुसी केड़ा गीत सुनोगे जी हुन प्रोग्राम च?
1: के बारे में लोगों को पता नहीं सीगा, वो बहुत मतलब कीमती जानकारी दी थी।
0: धन्यवाद जी।
1: हाँ जी,
0: हाँ जी, केड़ा गीत सुनोगे?
1: गाना मैडम जी अल्लाह रखा फिल्म को सुना लियो, मोहम्मद अजीज की आवाज में।
0: डन, ठीक है जी, जरूर पूरी कर दें तुम्हारी फरमाइश। बहुत बहुत शुक्रिया
1: ठीक
0: कॉल करने लई, धन्यवाद। लो जी, अल्लाह राखा फिल्म चो मोहम्मद रफ़ी, माफ़ करना मोहम्मद अजीज़ ते चौरस का गाया गीत, इन्हों की फरमाइश असी जरूर पूरी करांगे। ते तुसी भी अपनी फरमाइश फटाफट दस दो, हुण थोड़ा समा बाकी है प्रोग्राम च, उदे लिए 0181 2342 173 नंबर डायल करो, प्रोग्राम च शिरकत करो और अपना मन पसंदीदा गीत सुनो। फिलहाल इन्हों का एक गीत मन पसंद मोहम्मद अजीज़ ते चौरस की आवाज़।

0: मोहम्मद रफ़ी दी आवाज़ तुसी सुन रहे से गीत बहुत सोहना जहा प्रोग्राम हलो फरमाइश चल रही है और कड़ी दी सुइयां जिहड़ियां ने ना वो प्रोग्राम नूं हुण खत्म करन वाले इशारा कर रही ने लेकिन असी एक लास्ट कॉल जरूर लेनी है। हैलो हैलो
1: हेलो। हाँ जी हेलो। हाँ जी
0: हाँ जी हाँ जी नमस्कार जी।
1: हाँ जी
0: हाँ जी कौन बोल रहे जी?
1: बरनाला से बोल रहे हैं।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲੋ ਫਰਮਾਇਸ਼, ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਜ਼ 'ਤੇ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे, ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
1: सरकार ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में यात्रा करके लौटे एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है। मंत्रालय ने कहा कि वो सतर्क और पूरी तरह से तैयार है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं, गलत सूचना न फैलाएं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में एसआईआर प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉ मनोज शिरोडे को भी गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगे। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबसे बड़े लक्ष्यों को भी सतत प्रयास, धैर्य और दृढ़ इच्छा शक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत सुभाषितम को साझा करते हुए कहा कि देश के लोग इसी भावना से प्रेरित होकर भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। इजराइल के हवाई हमलों में दक्षिणी लेबनान में 31 लोग मारे गए और 40 अन्य घायल हो गए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजराइल और हिजबुल्ला के बीच बढ़ते तनाव के बीच कल कई कस्बों और गांवों को निशाना बनाकर हमले किए गए। अधिकारियों ने बताया कि सबसे घातक हमला दक्षिणी शहर टायर के पास बुर्ज अल शिमाल इलाके में हुआ, जहां 14 लोगों की जान चली गई और 16 अन्य घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। घरेलू शेयर बाजार के समृद्धि सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज मिला जुला रुख दर्ज किया गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 40 अंक बढ़कर 76,050 पर था, जबकि निफ्टी 20 अंक की वृद्धि के साथ 23,932 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान

0: अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। आओ हुन सुनदे हां प्रोग्राम तमक जलंधर पैंदी।

SM Javed Jida. कोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर तो मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अरजान अबान अब्बासी। अगला मैसेज लिख देने। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान तो बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, राम देवरा तो दिनेश चौहान, डांगरी तो बाबूराम जयपाल, अते खलीफों की बावड़ी तो खुदा बख्श खलीफा। सतीश कुमार बांसल पिंड सावंत खेड़ा मंडी डबवाली तो। अगले साथी ने हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान तो रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान अति गर्वी। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम सबीर राही, महराज जहान, आज़ाद नागार्जुन, हरिद्वार उत्तराखंड तो। अगले साथी ने मलोट तो कुलवंत गिल, जसवंत गिल, रमन गिल, बलजीत गिल, कनाडा तो जगतार जग्गा, तोला किंगरा तो दिशा मोहला, सोनी गिल, पाल गिल, गुरदयाल गिल, मुक्सर पिंड मोहल्ला तो। हनुमानगढ़ फाजिल्का तो लिख देने रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा ते डॉक्टर मदन लाल वर्मा। अगले साथी ने पिंड संदोहा नेड़े मोड़ मंडी, जगराज सिंह कणकवालिया, गंगाराम, मोहन लाल शौकी, अरविंदर कुमार जलंधर तो। दतरेंगी तो लिख देने भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा ते रुद्र वर्मा। फाजिलका पंजाब तो लिख देने भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाडी शालनी, तिवानशी अते वाणी खेड़ा ते नाल ही आरबी खेड़ा। श्रीगंगानगर राजस्थान तो मंगल जनागल राही श्रीमती रोशनी जनागल, अंकुर जनागल, इंदु अते डॉक्टर सुनील जनागल। रिंगनी छत्तीसगढ़ तो दिनेश वर्मा अते करुणा वर्मा। ते अगला मैसेज आया जी सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान तो रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान अते प्रतीक चौहान दा। पिंड लौंगोवाल जिला संगरूर तो लिखते ने अवतार सिंह चौहान, अजैब सिंह चौहान, कुलवीर सिंह अते कुलविंदर सिंह। बठिंडा रोड मंडी डबवाली तो लिखते ने राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी नारंग, तानिया नारंग। अते पिंड शाहपुर जाजन तहसील डेरा बाबा नानक तो लिखते ने राजवंत सिंह रंधावा, निशान सिंह फौजी, अमरीक पेटर। बलविंदर सरा गुणतास, रमनदीप, मनिंदर सरा लिखते ने पिंड मोरजट सिखा हनुमानगढ़ तो। ते अगले साथी ने पिंड चांदमारी तो मंगत राम, जगदीश रानी, संदीप मिद्धा, ममता रानी, अभिषेक मिद्धा अते दिव्या। पहाड़गंज मुल्तानी ढंडा तो लिख देने अनिल अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक अते मधु नायक। अते अगला मैसेज है बठिंडा पंजाब तो प्रेम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर जौड़ा, करण वीर करण, दुपिंदर वरिंदर, कुलदीप सिमू, एकम दवन अते अभिजोता। आओ फिर इन्हां सब दी रली मिली पसंद दा प्रोग्राम दा अगला गीत सुनदे हां सतिंदर सरताज दी आवाज़ विच।

रूही इकबाल, इमरान अहमद, आमना नसरीन बागवान, आसमा परी राबिया अते आशू अहमद। अगला मैसेज आया जी, गांव गड्डी कुटाहा, जिला पंचकुला, हरियाणा तो। सराजुद्दीन अंसारी, नसीबन बेगम, शानिया अंसारी, मोहम्मद इलियास, मुशाहिद हुसैन, रौनकी खान, अक्सा अंसारी, आयशा अंसारी, उमर अंसारी अते समीना अंसारी दा। अगला मैसेज लिखते ने पिंड डाकखाना निमनाबाद नेड़े सफीदो मंडी तो। हरियाणा तो जसबीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर ते करमजीत कौर। ते अगला मैसेज है चौटाला हरियाणा तो, दारा पंडित संजय शर्मा ते प्रियंका शर्मा दा। आओ फिर इन्हां सब दी रली मिली पसंद दा प्रोग्राम दा अगला गीत सुनदे हां दिलजीत दोसांझ दी आवाज़ विच।

परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकते हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे दिहाती प्रोग्राम दे विच परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

बलजिंदर कैंत, रोशन कैंत सिमरन, हनी ते, रबाब कैंत, करण ऑस्ट्रेलिया तो। गांव कलाना, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान तो लिख देने। विक्रम कड़वासरा, सचिन कड़वासरा, सतीश कड़वासरा, योगेश अते युधव कड़वासरा। अगला मैसेज आया जी, संदीप कुमार सिरोया, गोबिंद सिंह, कुमकुम, संजना सिरोया दा, फाजिलका तो। मॉलटाउन करनाल तो लिख देने सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा अते भमसल। अगला मैसेज है धनौरी तेलीवाल तो, निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, आलिया अते आयान बाबूदा। अर्शदीप सुरजीत सिंह अमरकोट तो लिख देने। बक्सर बिहार तो शराफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी अते सुरीत रमेश साहू। डुमराओ बिहार तो डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा अते दानिश अंसारी। गोला बाजार बक्सर तो श्रद्धानंद आर्य, अभ्यानंद आर्य अते परमानंद आर्य। अते सरीमपुर बक्सर तो राज एस डी अंसारी अते आसमा खातून अंसारी। विक्की मायल, संतोष मायल, रोनित मायल लिख देने पिंड साबुआना, जिला फाजिलका तो। अगली फरमाइश है जी, जगदीश कुमार मक्कड़, अरविंद, मुकेश, नीरज, भुविन ते लिख देने काबुलशा खुबन, जिला फाजिलका तो। अगली फरमाइश आई है रघुनाथपुरा, जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान तो, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित अते खुशी गोस्वामी दी। अगले साथी ने मलकीत, मेन बाजार गुनियाना मंडी तो, जोगिंदर सिंह पिंड सीविया तो, सुरजीत सिंह पिंड ख्याली वाला तो, अते कुलवंत सिंह मलोट तो। अगले साथी ने दुर्गा कलोनी हांसी तो, राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी अते बब्बू ते डब्बू। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान तो, दातार सिंह, संगीता, तुषार सिंह, रिकी शेखावत। गांव उगाला, जिला अंबाला, हरियाणा तो, राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव हरमन, परमजीत पूर्वा, कक्कड़वाल, पुल तूरी तो, बिंदर खेड़ी, करमजीत बमाल, मिट्टू सप्पल, अमरीक जलान अते रमन प्रिंस। अगला मैसेज आया जी, रेलवे कलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन तो, जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, शोभा नायक, जे एस नायक दा। ते अगला मैसेज लिख देने MLB रोड ग्वालियर तो, सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव, मेघा, साक्षी, आशीष, अनुज, विशु, छोटू, SK, पप्पी खुराना। अगले साथी ने नरगोड़ा छत्तीसगढ़ तो, महाराज कीर्तन पुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी अते दिशा गोस्वामी। ते अगले साथी ने सुखदेव कलेर, नरेश कलेर, संतोष रानी, पूजा रानी, पुनीत निगा, शुभदीप कलेर। आओ फिर इन्हों सब दी ए मैसेज है जी बला चौर तो, इन्हों सब दी रली मिली पसंद। अगला गीत हाजिर करते हैं, ये गीत गाया जी मिक्की नरूला ने।

गमहिया जमशेदपुर तो लिख देने, रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, बबूरी बाजार चंदोली तो विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर तो मुराहू जायसवाल, देवंती जायसवाल अते चकिया बाजार चंदौली तो सुंदर जायसवाल अते सुमन जायसवाल, पिंड जजेड़ी तहसील खरड़ जिला SES नगर तो लियाकत अली, निशा शाहीन, यास्मीन अरमान मलिक, मुजफ्फरपुर बिहार तो आर्यन राज, रोहित राज अते पीयूष कुमार, पिंड ककराली जिला पंचकुला तो वेद प्रकाश प्रजापति, लक्ष्य एंजल, नेहा अंजलि, गुरमित कौर, शुभम लवली अते लवली प्रजापति। गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा हरियाणा तो राधे श्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा, बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली सोनम अते आशीष विश्वकर्मा लिखते ने पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश तो, रघुवीर नगर तो दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब अते लड्डू। ते अगला मैसेज है जी करणवीर सिंह पॉल, सराबा नगर जलंधर तो, आर्यनगर कोहका भिलाई तो लिख देने उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगेल अते नंदनी जंगेल, धमधा ग्राम सुखरी कला तो लिख देने अमित जंगेल, शकुन जंगेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंगेल अते अंजलि जंगेल, महसौल सीतामढ़ी तो लिख देने अक्रम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अक्रम, वसीम अक्रम, रुबीना वसीम, नारिश वसीम, नदीम शमीम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, कलेर बिहार तो लिख देने मोहम्मद आसिफ खान अते निखत परवीन। अगला मैसेज है जी नरिंदर चावला दा पिंड मुकरौमपुर तहसील बस्सी पठाना जिला श्री फतेहगढ़ साहिब तो, हरीश प्रिंस मुस्कान पारची महक धनमीत मनी पीयूष नेहा ओम, सुधीर मलिक पिंड भागपुर जिला होशियारपुर तो लिख देने मन्नत जन्नत भाविक। ते अगला मैसेज है आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान ते राधे भविक ढींगरा दा पंचकुला तो, हैबोवाल कला उत्तरी जिला लुधियाना तो लिखते ने साडा। अगला मैसेज है जी दर्शन सिंह, अवतार सिंह, जबर जंग सिंह चीमा, पिंड अलूणा मियाना, तहसील पायल, जिला लुधियाना तो दा। ते अगले साथी ने नई बस्ती गंज डुंडवारा तो मोहम्मद याशीन हामसी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी अते मोहम्मद कलीम अंसारी ते यासीन हाशमी। ते अगले साथी ने चकला बाजार समाना शहर तो पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू समायल खुशदिल, हंसमुख लाल जिंदल, संजीव सुनीता बंटी जिंदल, आरजू महक खुशदिल। ते अगले साथी ने मालियान सरधना मेरठ तो अनिल जैन जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैनस्टे अते मास्टर जीवीएम जैन। अगले साथी ने इंजीनियर अशोक ग्रोवर, परवीन ग्रोवर, विक्रमजीत ग्रोवर, अनमोल सिंह, पवनीत ग्रोवर, आदर्श नगर बठिंडा तो, ब्रैम्पटन कैनेडा तो निखिल पाटिया, नीति पाटिया पाटिया, महरीन पाटिया। अगले साथी ने खुर्जा उत्तर प्रदेश तो तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा, गिद्दड़बाहा तो मनजीत तनेजा, परवीन तनेजा, पायल निताशा, हिनांशा तनेजा, पदमपुर तो भगवान दास तनेजा, पवन कुमार, योगेश तनेजा, आस्था तनेजा, मोहित मक्कड़, मुखी राम, मनजीत तनेजा ते पूजा, जलालाबाद पच्छमी तो सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी अते निमित आहूजा, आदित्य

0: मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआई प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। सरकार ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में लौटे एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं, गलत सूचना न फैलाएं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज टोरंटो में कनाडा में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस बातचीत के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में आए आर्थिक बदलावों पर प्रकाश डाला। उन्होंने भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के माध्यम से व्यापार, निवेश, नवाचार और लोगों के बीच आपसी सहयोग के क्षेत्रों में उभर रहे अपार अवसरों पर भी जोर दिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि इन मुश्किल दिनों में वे पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज महाराष्ट्र के अमरावती, वर्धा और चंद्रपुर जिलों के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। नागपुर, गढ़चिरौली और अकोला जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस वर्ष मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने आज खजुराहो में आयोजित योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिन पहले आयोजित बैठक में भाग लेते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था में स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से योग का अभ्यास अनिवार्य है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में आज अपने कैबिनेट की बैठक करेंगे। पूर्व राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड सहित कैबिनेट के सभी सदस्यों के इस बैठक में शामिल होने की संभावना है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के अनुसार इस बैठक के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप और उनके शीर्ष अधिकारी विदेशी और घरेलू दोनों ही मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब ईरान ने अमेरिका पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक का सेंसेक्स 69 अंक बढ़कर 76,079 पर था। निफ्टी 50-27 अंक की वृद्धि के साथ 1,941 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। आओ हुण सुनदे आं प्रोग्राम।

0: 5 साल का बच्चा, 3-4 साल का बच्चा जिहड़ा है, जिहड़ा प्ले वे जांदा है,
1: हम्म,
0: उन्हूं नहीं पता गर्मी की है,
1: जी
0: उन्हूं बस सन ते मून इन्ना ही पता है ना, सन आ गया ते सन चला गया, मून आ गया ते, है ना
1: बहुत ही वधिया हरप्रीत तुसीं गल कीती है। तो मैं थोनू इस बारे एक सोल्यूशन दिनी हाँ
0: जी।
1: कि जिन्हां दे बच्चे छोटे है ना, वो अपने बच्चों नू ड्राइंग बुक्स लैके दिओ, उन्हां नू दसो कि तुसीं इत्थे बैठ के ते ड्राइंग करो, जिद्दां मर्जी टेढ़ियां सिद्धियां लाइनां लगाण, उन्हां दे उत्ते कलर करन, उन्हां दे नाल उन्हां दी क्रिएटिविटी वधदी है। ठीक है, उन्हां नू रंग बिरंगियां पिक्चर्स वालियां बुक्स लैके दिओ,
0: जी,
1: है
0: और
1: ना।
0: सब तो वड्डी गल है उन्हां दे नाल आप नचो टप्पो गाओ, घर खुशी मनाओ, पक्खा चलाओ, कूलर चलाओ, एसी चलाओ, और बंद करके ठंडा ठंडा वातावरण करके, और बच्चियां नू अजकल पेरेंट्स कहंदे ने ठंडा ठंडा कूल कूल करके अंदर बैठो ते साडा प्रोग्राम सुनो, साडे नाल राबता कायम रखो, और
1: बिल्कुल
0: साडे जरिए नचो टप्पो गाओ, ते आपां हुण लैणा आ विराम ते नचदे टपदे आ थोड़ा जिहा।

0: ताकि खाता धारक नू इस बारे जानकारी हो सके ते उसका कोई नुकसान ना हो सके। तो
1: जी
0: उसी गल की सी कि अलग अलग जो अकाउंट्स होंगे ने सेविंग अकाउंट्स या अलग अकाउंट्स उस विच भी अनक्लेम्ड रह जाते हैं। साढ़े सुनने वालों ये भी दसो कि फिक्स डिपॉजिट लॉकर या इंश्योरेंस नाल जुड़ी रकम भी इस विच हो सकती है।
1: बिल्कुल, इसी कैटागरी दे विच, इसी श्रेणी दे विच वो भी डिक्लेयर होंदे
0: जी
1: ने। तुसी जिक्र किया फिक्स्ड डिपॉजिट का,
0: जी
1: जिन्होंने आप FDR कहने हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट भी इस श्रेणी दे विच कैटागराइज किया जाता
0: ठीक है।
1: है, पर वो दे विच थोड़ा जहा फर्क है। जिते आपां सेविंग जां चालू खाते की गल की है कि जो ट्रांजैक्शन 10 साल तक नहीं हुई
0: जी
1: तो फिर वो DE फंड अनक्लेम्ड खाते दे विच जाऊगा।
0: जी
1: उस तरीके वो तो वक्रा जिहड़ा FDR है, FDR क्योंकि एक फिक्स समय वास्ते होंदा,
0: जी
1: उहदी एक मच्योरिटी डेट होंदी। उस मच्योरिटी डेट तो लैके 10 साल तक जेकर कोई उन्हों लैण वास्ते नहीं आया तो फिर वह उस खाते जाऊगा। इदा समझो कि जे तुसी खाता जिहड़ा है

0: जानकारी के लिए कृपया 9 दबाएं।
1: सावधान, अजे ही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट ले रुको ते सोचो, पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
2: ब्रेक तो बाद एक बार फिर हाजिर हाँ। प्रोग्राम चल रहा वसदे वेड़े, तो वसदे वेड़े दे विच वेला हो गया सिलसिला मेरी कलम तो।
3: जी, ते मेरी कलम तो अनुवान तहत इंद्रजीत पाल कौर की कहानी सुनते हैं। ओ गल।
4: गुरुद्वारे के सामने न्यू मार्केट वाल जाती सड़क, सड़क के दूजे पासे बोटानिकल गार्डन की कंध, जिसके कोल चमचमाउंदी कार खड़ी सी। पीले रंग विच रत्ती पर सिंधूरी रंग मिला दिता जाए, इहोजा रंग सी कार दा। शाहीन दे ड्राइवर फरहान ने पुरानी कार दी ब्रेक ज़्यादा जोर नाल दबा दिती सी। किसे होए टायर चिर दी आवाज़ करदे होए गुरुद्वारे दे मुख दरवाजे दे सामने रुक गए। हफ्ते दा अखीर ना होण करके इक्का दुक्का लोग ही अंदर मत्था टेकन जा रहे सन। किसे माहिर शोफर दी तरह उसले दरवाज़ा खोल के फरहान एक पासे खलो गया। बड़े एहतियात नाल एक हाथ विच प्रसाद दा डोंगा फड़ के दूजे नाल पर्स संभालदी ओह कार विचों उतरी। कार रुकन तो पहला ही उसने उन्हां नूं देख लिया सी। ओ गार्डन वाल मूँह करके खड़े अशोक बिरखां दे चुप चाप झड़दे पीले पत्तियां नूं देखते हुए मोबाइल ते गल कर रहे सन। ब्रेक दी आवाज़ सुन के उन्होंने मुड़ के देखिया, फिर जेब विचों हथ कढ़ के उतां चुक दिता। ओ उस वाल देखता रहे सन, पर उन्हां दा ध्यान मोबाइल ते चल रही गल वाल ही सी। तकरीबन 12 सालां दे लंबे वक्फे दे बाद ओ उन्हां नूं देख रही सी। उसका नामुराद दिल फिर उंज ही धड़किया जिवें पहली वार धड़किया सी। यादां दा आज़ाद पंछी सालां पिछां उडारी मार गया। पिछले 12 सालां विच ओह कई वार मस्जिदां मीनारां तलाबां दे इस नवाबी शहर विच आई है। हर वाल उन्हां दे नाल फोन ते गल तां जरूर हुंदी सी, पर ना कदे उन्हां ने उस नाल मिलन दी गल कीती, ना उन्हें कदे अपनी ओह सौं तोड़ी, सौं जिहड़ी उसने उस घटना नहीं उस गल दे बाद खाधी सी, जिहड़ी गल एक व्याहता औरत लई एक व्याहे पुरश नूं कहना गुनाह है। क्यों वर्जनावां दीयां सारियां हद्दां तोड़ के ओह शब्द उसकी जबान तो निकल गए सन, जिवें मौत दे करीब खड़े बंदे दे मन विच सालां तो दबा के रखियां भावनावां दा वहन सारियां सीमावां तोड़ के सैलाब बन वक्त तुरे। इन्ने साल बीत चुके ने, पर लगता है जिवें कल दी ही गल हुए। उस दिन ओह उसनू डॉक्टर रफत दे घर छड्डन जा रहे सन। सरकारी हस्पताल दे सामने वाली सड़क तो लंघदिआं कार दा पहिया शायद किसी टोए विचों दी हो के निकलिया सी। कार नूं लगे झटके करके उसकी गल दे अखीरले शब्द टुट गए सन, पर इन्ने भी नहीं सन टुटे कि अर्थ स्पष्ट ना हो सकन। ओह चंबित जे कुछ चिर चुपचाप बैठे रहे सन। कार राजभवन वाल जांदी सड़क वाल मुड़ी तां उन्हां ने उस वाल देख के हैरानी नाल पुछया, की कहा तुसां? कुछ नहीं। बेशक उन्हां ने उसका कहा सुन लिया सी, पर जो सुनिया सी उसते जिवें उन्हां नूं यकीन नहीं सी हो रहा। फिर हौरी हौरी ओ अंकुर रुख बन के उसकी सारी होंद ते छा गया। डॉक्टर रफत दे घर तक वह चुपचाप कार चलाउंदे रहे सन। उस कोल तां कहन नूं कुछ होर है ही नहीं सी। कार रुकी तां उसने अपने सारे प्राण अखां विच भर के उन्हां वल देखिया। उन्हां दे नेत्रां विच उभरे भाव अज भी उसनूं याद हन। हुण भी कदे कदे अपने हनेरियां तो घबरा के ओह उस तकनी नूं अपनी इच्छा अनुसार डी कोड कर लैंदी है। एक जुगनू जिहा टिमटमाउण लग पैंदा है मन दे हनेरे विच। कार विचों उतर के वह बिना कुछ कहा गेट खोल के अंदर चली गई सी। लंबे ड्राइव इन ते तुरद्या उसनू लग रहा सी उसके पैरों में बेड़ियां पईयां ने। पहली पौड़ी ते पैर रख के उसने मुड़ के देखिया सी, जिवें एक युग नू अलविदा कह रही होवे। ओह उस वल ही देख रहे सन। पौड़ियां चढ़दियाँ उसके मन में कोई दुविधा नहीं सी। मन इंज हल्का सी जिवें गिरजा घर के कन्फैशन बक्से विच पादरी दे सन्मुख कन्फैस करन दे बाद किसी मानसिक बोझ थले दबे बंदे का हुंदा है। चंगा रंग है तुहाडी कार दा। एक नज़र उन्हां नूं देख के ही वह समझ गई सी कि समा उन्हां ते बड़ा बेरहम गुजरिया है। सालां बद्दी वह अपनी पत्नी की बीमारी दे नाल जूझते रहे सन, पर हुण बेटी दे दुख ने तां जिवें उन्हां नूं तोड़ ही दिता सी। अखां दी ओह चमक, बुलां ते सदा खिड़ी रहन वाली मुस्कान, समय दियां औखियां भारियां परतां थले दब गई सी। पिछले कई सालों तो ओ ही उन्हां दे जन्म दिन ते फोन करदी सी। शुभकामनावां देन दे नाल नाल साल विच एक वार ही सही उन्हां दी आवाज़ सुनन दा लोभ वो छड ना सकदी। जीवन अपूरत अतृप्त इच्छावां दा सिलसिला जिहा बन गया सी। बस यही इको एक इच्छा सी जो उसदे वस विच सी, जिसनूं पूरा करन दे बाद कुछ दिनां दे लई ही सही उस दीआं उदासियां दे बदलां विच एक किरण जिही चमकदी रहिंदी। तकरीबन 3 साल पहलां एक दिन उन्हां वल्लों फोन आया तो उसनूं यकीन

0: आज दे शक्ति रूपाहन बेगम हज़रत महल। बेगम हज़रत महल दा नाम मुहम्मदी खानू सी अते उसका जन्म फैजाबाद अवध यानी भारत विच 1820 ईस्वी दे लगभग होया सी। ओ पेशे नाल एक दरबारी सी अते बाद विच उसनू एक परी वजों आख्या जान लग्या अते उसनू महक परी वजों जानिया जांदा सी। अवध दे राजे दी शाही पत्नी वजों स्वीकार किते जान तो बाद ओ एक बेगम हो गई अते उन्हां दे पुत्तर वीर जिस कादर दे जन्म तो बाद उसनू हज़रत महल दा खिताब दिता गया। ओ पिछले ताजदार ए अवध वाजिद अली शाह दी जूनियर सी। अंग्रेजा ने 1856 विच अवध नू अपने नाल मिला लिया सी अते वाजिद अली शाह नू कलकत्ता देश निकाला दे दिता गया सी। उसदे पति नू कलकत्ते देश निकालन तो बाद उसने नवाब तो तलाक के बावजूद अवध राज दे मामलिया दी जिम्मेदारी ली जो उस समय मौजूदा उत्तर प्रदेश भारत का एक वड्डा हिस्सा सी। 1857 तो 1858 दे इंडियन बगावत दे समय राजा जलाल सिंह दी अगवाई विच बेगम हज़रत महल ने समर्थकां नू समूह दे ब्रिटिश दीआं ताकतां दे विरुद्ध बगावत कीती। बाद विच उन्हां ने लखनऊ दा कब्जा लै लिया अते उसने अपने पुत्र वीर जिस कादर नू अवध दा शासक घोषित कीता। बेगम हज़रत महल दी एक मुख शिकायत ए सी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सड़कां दा रस्ता बनाउण दे लई मंदरां अते मस्जिदां नू अचानक ढाया सी। अंत विच उसनू नेपाल वापस आना पिया। प्रधानमंत्री जंग बहादुर द्वारा उसनू शुरू विच शरण देण तों इनकार कीता गया सी पर बाद विच उसनू रहण दी इजाजत दे दित्ती गई। 1879 विच उसकी मौत हो गई अते उसनू काठमांडू दी जामा मस्जिद दे ग्राउंड विच एक अनजान कबर विच दफनाया गया। उसकी मौत तो बाद महाराणी विक्टोरिया दी जुबली दे मौके ते ब्रिटिश सरकार ने बिरजिस कादर नू माफ़ कर दिता ते उसनू घर वापस जाण दी आग्या दित्ती गई। काठमांडू विच जामा मस्जिद नेड़े बेगम हज़रत महल दी मकबरे दी तस्वीर है। बेगम हज़रत महल दी कबर प्रसिद्ध दरबार मार्ग तो दूर जामा मस्जिद घंटाघर दे नेड़े काठमांडू दे केंद्री हिस्से विच स्थित है। जामा मस्जिद केंद्री कमेटी इस दी देखभाल करदी है। 15 अगस्त 1962 नू हज़रत महल नू महान विद्रोह विच उसकी भूमिका बदले लखनऊ दे हज़रतगंज दे पुराने विक्टोरिया पार्क विच सन्मानित किया गया। पार्क दे नाम बदलन दे नाल एक संगमरमर दी यादगार बनाई गई सी जिस विच चार गोल पित्तल दियां तख्तियां हन। पार्क नू दुशहरे दे दौरान रामलीला अते बोनफायर अते नाल ही लखनऊ महा उत्सव लई वरत्या जांदा है। 10 मई 1984 नू भारत सरकार ने महल दे सन्मान विच यादगारी डाक टिकट जारी किया। पहले दिन दा कवर सीआर प्रकाशी द्वारा डिजाइन किया गया सी। 15 लाख स्टैंप्स जारी किए गए सन। घट गिणती मामलों के मंत्रालय भारत सरकार ने भारत विच घट गिणती भाईचारिया नाल संबंधित होनहार कुड़ियों लई बेगम हज़रत महल नैशनल स्कॉलरशिप की शुरुआत की है। इस स्कॉलरशिप मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा लागू की गई है। असी एहो जिहियां महान हस्तियां नू सलाम करदे हाँ जिन्हां ने देश दे लई या अपनी होंद लई या औरतां दी होंद लई एहो जे कदम चुके जिन्हां नू सुन के या देख के सानू बहुत ही खुशी मिलदी है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया अलका जी, थोड़ा तुसी बड़े वधिया तरीके दे नाल शक्ति दे रूपक दे नाल साड़ी सांझ पाई, शक्ति रूपा प्रोग्राम लैके साडे नाल जुड़े। और सब तो वड्डी गल ए हुंदी है कि जिहड़ा बुधवार दा साडा दिन हुंदा है जिहदे विच साडे वख वख सिलसिले हुंदे है, साडा उहदे पिछे मंतव इही है कि असी अपने सुनन वालियां नू डिफरेंट परस्पेक्टिव डिफरेंट एरियाज़ दे नाल उहनां नू जानकारी देईए, मनोरंजन करिए ताकि कोई ना कोई गल जरूर उहनां दे सुनन नू उहनां नू मिले जिहदे नाल उहनां दी जिंदगी च चेंजिज़ आ सकन।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਵਿਹੜੇ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਸ 'ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 1 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागजी की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने

0: ने चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता कि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है, जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। CBI ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरकार ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में लौटे एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं, गलत सूचना न फैलाएं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के अपनी यात्रा के 2 दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल ने कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि इन मुश्किल दिनों में वे पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग भारत के प्राचीन ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है और निवारक स्वास्थ्य देखभाल तथा संतुलित जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्री जाधव ने आज खजुराहो में आयोजित योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिन पहले आयोजित बैठक में भाग लेते हुए ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज दोपहर के कारोबार में 41 अंक बढ़कर 76,051 जबकि निफ्टी 21 अंक के वृद्धि के साथ 23,935 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। हुन पेश है साढ़े अज प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्रामा दा वेरवा ते उना दा प्रसारण समा।

7:45 सुन सकोगे हिंदी वार्ता, मेरी व्यज्ञ वार्ता, आसमान से गिरा खजूर में अटका। वार्ताकार होंगे प्रेम विज।

रात 8 बजे दा समा होवेगा प्रोग्राम जिंदगी हसीन है दा। आठ बज के 45 मिनट ते सुनना समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज़ एट 9, 9:15 बजे स्पॉटलाइट, 9:30 बजे चर्चा का विषय साढ़े दिल्ली केंद्र तों।

फौजी वीरों जय हिंद। मैं निधि चुक लैके हाजिर हाँ तुहाडे लई फिल्मी गीतां दा ए प्रोग्राम ते प्रोग्राम दी शुरुआत करदे हां फिल्म वीर दे एक गीत दे नाल। इस गीत नूं आवाज़ दित्ती है रेखा भारद्वाज ने।

पहुंची वीरो, रेखा भारद्वाज दे इस गीत तो बाद अगली आवाज है एआर रहमान, जावेद अली अते मोहित चौहान दी। फिल्म का नाम है रॉक स्टार।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देस पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तों वधा के 30 मई 2026 कर दित्ती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

फौजी वीरो प्रोग्राम च अगला गीत सुनते हैं फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी दा। इस गीत नू आवाज़ दिती है नीरज श्रीधर अते सुजैन डी मेलो ने।

0: मराठवाड़ा, रॉयलसीमा, जनूबी कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और शुमाल मशरक के बाद हिस्सों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी जांच ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 इम्तहानात पेपर लीक मामले में दो और मुलजिमों को हिरासत में लिया है। एजेंसी ने अब तक इस मामले में दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहल्या नगर से 13 मुलजिमीन को हिरासत में लिया है। लातूर में मुकीम डॉक्टर मनोज शिरूरे नाम के एक मुलजिम को पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के मुताबिक उसने तीन तलबा की मुलजिम पीवी कुलकर्णी से केमिस्ट्री के सवाल हासिल करने में मदद की खातिर अहम रोल अदा किया था, जिसमें मुलजिम कोचिंग सेंटर मालिक का बेटा शामिल है। अमेरिका के सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान के इम्कानी साजिश होने पर सवाल उठाया है और यह भी कहा है कि वो गैर जानिबदार नहीं हो सकता, क्योंकि एक तवील अरसे से पाकिस्तान इसराइल की मुखालफत करता रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में ग्राहम ने दावा किया कि ईरान के फौजी हवाई जहाज़ पाकिस्तान की फजाइया के हवाई अड्डों पर रखे जा रहे हैं और पाकिस्तानी रहनुमाओं की तरफ से इसराइल पर रायजनी परेशान कुन है। अक्वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पर्वतन नैनी अक्वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में पाकिस्तान पर शदीद नुक्ताचीनी की है और कहा है कि वो बराबर सरहद पार से दहशतगर्दी फैला रहा है। भारत के नुमाइंदे ने कहा कि उसे भारत के खिलाफ दहशतगर्दी को शह देने का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आज न्यू चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम राजस्थान रॉयल्स के मध्य मुकाबिल होगी। ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। फातह टीम फाइनल में जगह बनाने के लिए जुमे को गुजरात टाइटंस का मुकाबला करेगी। फाइनल इस महीने की 31 तारीख को अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। कल रात धर्मशाला में खेले गए क्वालिफायर वन मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम गुजरात टाइटंस को 92 रन से हरा कर आईपीएल 2026 के फाइनल में पहुंची है। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर फहरिस्तों की खसूसी तफसीली नजरसानी के इंतखाबी कमीशन के इख्तियार को बरकरार रखा है। उसने कहा है कि ये लोगों की नुमाइंदगी से मुतालिक कानून 1950 से मुताबिकत रखता है। भारत और कनाडा ने 2030 तक बाहमी तिजारत को 50 अरब अमरीकी डॉलर तक वसत देने के अपने मुश्तरक अहद का अयादा किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बढ़ते दर्जे हरारत के दरमियान लोगों से एहतियाती इकदाम करने पर जोर दिया है। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 इम्तहानात के पेपर लीक मामले में दो और मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान बातचीत में इम्कानी सालिस की हैसियत से पाकिस्तान के रोल पर सवाल उठाया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। फौजी वीराली प्रोग्राम जारी है ते प्रोग्राम च फौजी वीरो अगला गीत सुनदे हां फिल्म उड़ान दा। इस गीत नू आवाज़ दिती है अमित त्रिवेदी ने।

फौजी वीरो प्रोग्राम च अगला गीत सुनते हैं फिल्म क्वीन दा। इस गीत नू आवाज़ दिती है रुपेश कुमार राम ने।

फौजी वीरो प्रोग्राम चलते चलते एक अखीला गीत हाजिर है, फिल्म इश्किया दा। इस गीत नू आवाज़ दिती है राहत फतेह अली खान ने।

0: ਪੌਂਟੀ ਵੀਰੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕੋਗੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा, ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। उन्होंने इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध का हवाला दिया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं

0: को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने SIR को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी BLO 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे।
2: कमीशन की तरफ से दिल्ली में SIR टाइम शेड्यूल लॉन्च हो चुका है जो कि 20 जून से शुरू होगा और 7 अक्टूबर को हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। तो इसमें जो हाउस टू हाउस विजिट है BLOs की वो हमारी 30 जून से शुरू होगी और 29 जुलाई तक चलेगी। इस हाउस टू हाउस शेड्यूल में BLO हर इलेक्टर के यहाँ जाएंगे जो भी उनका एड्रेस इलेक्टोरल रोल में है और 2 फॉर्म लेके जाएंगे इनुमरेशन फॉर्म। एक फॉर्म में इलेक्टर ने अपनी डिटेल भरनी है और अपने पास रखना है, दूसरा फॉर्म भर के BLO को दे देना है और दोनों फॉर्म पे BLO काउंटर साइन करेंगे एक्नॉलेजमेंट के लिए।
0: दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदाताओं को भरे हुए जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। श्री कुमार ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच पड़ताल की व्यवस्था है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: SIR का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। मतदाताओं की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए जागरूकता अभियान और विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि मतदाताओं को जनगणना प्रपत्र जमा करने में सहायता मिल सके। आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली में वर्ष 2002 में हुए अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस प्रक्रिया में 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच की व्यवस्था रहेगी और राजनीतिक दलों को बूथ स्तर के एजेंटों के माध्यम से इसमें शामिल किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने सुझाव दिया कि जो भी प्यासा हो उसे एक गिलास पानी जरूर पिलाएं। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि वे अपने परिवार और प्रियजनों के संपर्क में रहें और उनका हालचाल पूछते रहें। दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से इन मुश्किल दिनों में पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखने का अनुरोध किया। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कुछ स्थानों और दिल्ली में भीषण लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कोंकण और गोवा, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच आज राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। एक रिपोर्ट।
1: झुलसाने वाली गर्मी से प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा गया। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कोटा की रात सबसे गर्म रही। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए प्रशासन की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव करने, आश्रय स्थल बनाने और पीने के पानी की व्यवस्था लगातार की जा रही है। चिकित्सा संस्थानों में भी लू और तापघात के मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के साथ आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगटोक में होने वाले सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉक्टर मनोज शिरोडिया को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के अनुसार उन्होंने एक कोचिंग केंद्र के मालिक के बेटे सहित 3 छात्रों को आरोपी पीवी कुलकर्णी से रसायन विज्ञान के प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी तेजस हर्षद कुमार शाह है, जो पुणे स्थित एक कोचिंग सेंटर डॉक्टर अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी में फिजिक्स का फैकल्टी है। उसे नीट परीक्षा के लीक हुए भौतिक विज्ञान के प्रश्न के आरोपी मनीषा हवलदार से मिले थे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने केरला में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर जांच शुरू कर दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज सुबह से तिरुवनंतपुरम में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर निरीक्षण शुरू कर दिया है। केरलम में 10 से अधिक जगहों पर तलाशी और निरीक्षण की कार्रवाई चल रही है। हालांकि ईडी की ओर से अब तक इन कार्रवाइयों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। इस बीच केरलम हाईकोर्ट ने कल प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। यह याचिका केरलम के कोच्चि स्थित एक निजी कंपनी के अधिकारियों द्वारा दायर की गई थी। ईडी की जांच उस निजी कंपनी के परिसरों में भी जारी है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पुलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यान्वित क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक $50 अरब तक बढ़ाने

0: के लक्ष्य की पुष्टि की। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत कनाडा व्यापार को मजबूत करने में कनाडा में रह रहे भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
1: भारत और कनाडा के बीच साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मजबूत लोकतांत्रिक नींव है। दोनों देश इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब सशक्त संस्थाएं कानून के शासन को मजबूती से कायम रखती है, तब दुनिया के सामने यह एक उदाहरण बनता है कि अच्छे मित्र और भरोसेमंद साझेदार किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों की सरकारों

0: सशक्त संस्थाएं कानून के शासन को मजबूती से कायम रखती है, तब दुनिया के सामने यह एक उदाहरण बनता है कि अच्छे मित्र और भरोसेमंद साझेदार किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों की सरकारों, संस्थाओं, व्यवसायों और आम लोगों के बीच जो आपसी विश्वास और सहयोग है, वही इस रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाता है।
1: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। श्री हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को यह स्वीकार करना होगा कि सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के परिणाम उसे भुगतने होंगे।
2: पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध, बिना उकसावे की आक्रामक कार्रवाइयों और लगातार सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देकर संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। हजार घाव देकर भारत को कमजोर करने की उसकी नीति आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा देने की उसकी सोच को दर्शाती है।
3: Anti-India rhetoric has continued unabated since its creation.
1: पाकिस्तान का अब्राहम समझौते में शामिल होने से इनकार करने की रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कड़ी आलोचना की है। रिपब्लिकन सेनेटर ग्राहम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान से संबंधित किसी भी कूटनीति में पाकिस्तान की भूमिका अनुचित है। आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमेरिका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र ए।
5: एक जरूरी सूचना, आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकां दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा, रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन दी आखरी तरीक हुण 20 मई तो वधा के 30 मई 2026 कर दिती गई है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com या newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानु जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
4: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र ए।

प्रोग्राम चल रहा है रंगली धरती ते तुसी आनंद मान रहे हो सतनाम सिंह दुगरीवाला दे गाए लोक गीतां दा। आ हुण सुनदे आं उन्हां दी आवाज़ विच कुछ टप्पे।

एक वादा है जो टुटेगा नहीं कदे, साथ साडा छुटेगा ना कदे, चलदा रहेगा अपने प्यार दा कारवा, ते हे प्यार दा कारवा रुकेगा ना कदे। दोस्तों असी तुहानू इहदे तुहाडियां फरमाइशां दे गीत सुणांदे रहांगे, ते तुहाडे वल्लों भी बहुत सारियां चिट्ठियां सानू प्यार भरियां आ रहियां ने। प्रोग्राम दी अगली फरमाइश लई सानू चिट्ठियां भेजण वाले ने मुक्तसर तों बाबू सिंह धमान, बलजिंदर कौर, रवनीत, निशु ते भुपिंदर, मुहम्मदपुर सोतर ढाणियां रतियां तों जीवन सिंह बूक, शंटी बूक, सिमरन, कुशल्या राणी, गुरछिंदर बूक, बब्बू, कुलदीप, कीरत, भूखनखेड़ा, बलवीर, जशन। इस तों अलावा गांधी चौंक रोपड़ तों हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक, मीका बिरक, अपरा सिटी रूपलाल ना अपरा सिटी तों रूपलाल नाहर, शेखर नाहर, अमन नाहर, अंबा प्रधान, राजा पलवान, परमिंदर ते होर इन्हां दे परिवारक मैंबर, गगड़ साहिर हाजीपुर तों मोहन चितू, इस तों बाद केहर सिंह, संदेश ते दया राम। इन्हां सारयां ने फरमाइश कीती है मंगी माल दी आवाज़ विच किसी भी गीत दी। सुनदे हां प्रोग्राम दा अगला गीत मंगी माल दी आवाज़ विच।

प्रोग्राम सदाबहार गीता दे विच अगला गीत हाजिर है फिल्म संजोग दा। इस गीत नू आवाज़ दिती है लता मंगेशकर ने।

सुन यार हमारे सज्जन, एक करो बेनंतिया, तिस मोहन लाल प्यारे हो फिरो खोजंतिया। इस शब्द दा गायन कीता सी भाई गुरमीत सिंह शांत ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों को मदद करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के दूसरे चरण की मंजूरी को स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा है कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की खंडपीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upsconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्चस्तरीय बैठकें की। श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2030 तक $50 अरब तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। कई प्रमुख मानवाधिकार

0: संगठनों और छात्र संस्थाओं ने पाकिस्तान में बलूच नागरिकों के जबरन गायब किए जाने की बढ़ती घटनाओं की कड़ी निंदा की है। आरोप है कि इन घटनाओं को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। इन संगठनों ने कहा कि कई प्रभावित परिवारों के लिए ईद का त्यौहार शोक, अनिश्चितता और अपनों से बिछड़ने का दर्द में बदल गया है। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट के पहले एलिमिनेटर मुकाबले में आज शाम 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इस मैच की विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से मुकाबला करेगी, वहीं हारने वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: इस वेले 6:05 हो रहे ने। हुण पेशे प्रोग्रामा दा वेरवा।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज़ ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट

0: हाँ जी, देखो पटवारी साहब, अज जिहड़ा खेतीबाड़ी दे विच जदों आपां देखदे हां कि अलग-अलग तरहां दे विचार ने। कई बंदे कहिंदे आ कि खेती बहुत लाहेमंद कित्ता,
1: लाहेवंद है। हाँ जी, हाँ जी।
0: आउण वाले समें दे विच खेती दा बड़ा भविख नरोआ है। कुछ लोग कहिंदे आ कि खेती खत्म हो जाणी है, इह आपणी आपणी
1: अपनी
0: धारणा
1: अपनी
0: है, आपां किसे
1: बिल्कुल
0: नूं रोक नहीं सकदे।
1: नहीं सकते जी।
0: पर कहिंदे आ वी कोई वी चीज़ जिहड़ी जमीन नाल जुड़ी है वो कदे खत्म नहीं हो
1: खत्म नहीं
0: सकती,
1: हो सकती। हाँ।
0: क्योंकि यह किता धंधा ऐसा है, यह जमीनी किता धंधा है, यह तो पूरी दुनिया घूमती है।
1: घूमदी है।
0: इतों अनाज का दाना पैदा होता है तां साडा शरीर चलता है।
1: चलता है जी। बिल्कुल
0: सो इस
1: बिल्कुल।
0: करके हाँ, ये फेर बदल जड़े है समय के लिहाज नाल वो करने बड़े जरूरी ने।
1: जरूरी है।
0: हुण अज बहुत सारे साडे जिमीदार है जिहड़े रवायती खेती करते हैं, बहुत सारे जिमीदार है जिहड़े वन सुबन्नता वाली खेती करते हैं, जां इह कह सकदे हैं कि जिहड़ी समय की लोड़ वाली खेती है उन्हों करते हैं।
1: उन्हों करते हैं।
0: अपने नाल ना टैलीफोन के जरिए गल्लां बातां कीतियां हरपिंदर सिंह संधू हो रहे ने फाजिलका
1: जी
0: तों, ते इन्हां नाल इन्हां दे खेती दे बाबत, इन्हां दे कम्मां कारां दे बाबत सारी तफसीली गल्लां बातां आपां साझे करदे हैं।
1: आओ जी, सुनते हैं।
2: सरदार हरपिंदर सिंह संधू जी, तुसी पिंड

0: हाँ जी देखो पटवारी साहब जिदा आप सारे जानते हैं कि प्रवास जिहड़ा है मनुखी है जा जीवन का प्रवास है यह मुढ़ कदीमों चलता आया
1: चलता आ रहा जी बिल्कुल सही
0: और यह होना भी चाहिए है। देखो जे आप एक जगह के उत्ते खड़े रहांगे तो एक जगह के उत्ते खड़ के फिर दुनिया जिहड़ी है खड़ जाती है
1: खड़ जाती है।
0: सो देखो हुण अज आपां देखदे आं कि असी मनुखी प्रवास भी है असी भी जाने वख-वख थावां ते वख-वख देशां दे विच मुल्कां दे विच जाने आ ते इसे तरह पंछी भी प्रवास करदे आ
1: बिल्कुल
0: ओह मौसम दे लिहाज नाल करदे आ असी बेमौसमां करदे आ फर्क नहीं
1: फर्क नहीं
0: है असी अपणियां लोड़ां मुताबक करदे आ ओह अपणियां लोड़ां मुताबक करदे है। सो प्रवासी पंछी जदों इत्थे आउंदे है उहनां दा साडे जीवन च बड़ा महत्व है तो उन्होंने उत्ते कई बार आप देखते हैं कई तरह के तशद्दुद भी किए जाते हैं तो यह चीज़ जी माड़ी है। इस विषय के बाबत गल्लां बातां डॉक्टर तेजदीप कौर कलेर होना सांझियां हुई आप सांझियां करते हैं।
1: आओ सुनिए जी
0: डॉक्टर तेजदीप कौर कलेर जी तुसी प्रमुख पंछी विज्ञानी मुखी जीव विज्ञान विभाग खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना तो साढ़े को आयो सब तो पहलों देहाती प्रोग्राम की बैठक के जी ऐ कहने डॉक्टर साहब गल है कि ताडा विशा या जिस विषय नाल तुसी संबंध रखते हो यह विशा ऐसा है जिहदी गंभीरता नूं अज दे समय दे विच जानना पछानना और इहदे बाबत जागरूक होना इस समय की लोड़ है क्योंकि मुढ़ कदीम तो आपां देखदे आं कि पंछियां दा जिहड़ा मनुखी जीवन दे विच बहुत वड्डा योगदान है या आपां इह कह सकदे आं कि साडा पंछियां दे नाल पशुआं दे नाल मुढ़ कदीमी रिश्ता है क्योंकि बंदा कल्ला तां आया नहीं इत्थे उहदे नाल हर जीआ जंत है जिहड़ा मालिक ने किसी ना किसी कार्ज लिए इत्थे भेजिया है। अज क्योंकि आपां विशा जिहड़ा है प्रवासी पंछियों की गल करनी है आपां ते सब तो पहला तो आपां क्योंकि आम जन सधारण पढ़े लिखे लोग शायद जानते भी हो या अनपढ़ भी कई जानते होंगे पर यह है कि आम जन सधारण नूं पंछी ते प्रवासी पंछी ये दोनों चीज़ों जदों आपां इन्हां नूं भिन्न भेद समझना होवे कि पंछी ते प्रवासी पंछी का अंतर की है इहनूं आपां किद्दां समझ सकदे।
2: रुलिया राम जी बहुत बहुत शुक्रिया इंट्रोडक्शन दे लई जिहड़ा आपां तुसीं आपां सबजैक्ट ते गल कर रहे हैं बहुत ही दिलचस्प आ ते इह सदियां तो ही मनुख नूं किसे ना किसे तरह ना जिवें अपनी अपनी कह लो नॉलेज

0: किया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: असि आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले 7:30 बज रहे ने। हुण तुसी सुनोगे पंजाबी च खबरां।
3: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चोणवी खबरां। आर्थिक मामलों बारे कैबिनेट कमेटी ने जनतक वंड प्रणाली PDS नूं आधुनिक बनाउण दी योजना नूं March 2031 तक जारी रखण नूं प्रवानगी दे दित्ती है। सर्वोच्च अदालत ने चोण कमिश्नर वालों करवाई गई वोटर सूचियां की विशेष तीबर सोध SIR प्रक्रिया की वैधता नूं बरकरार रखिया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अज NEET UG 2026 पेपर लीक मामले में 3 होर लोगों को गिरफ्तार किया है। राष्ट्रपति

0: और मिलजुल कर राष्ट्रीय विकास में योगदान देने का भावना में आगे बढ़े।
1: राष्ट्रपति ने उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान पाने की भी अपील की। अज देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नहरू की बरसी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्ण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने पंडित नहरू नूं उन्हां दी बरसी ते श्रद्धांजलि भेंट की है। पंडित जवाहर लाल नहरू 15 अगस्त 1947 तों 27 मई 1964 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। प्रसिद्ध निशानेबाज ते खेड प्रशासक राजा रणधीर सिंह दा 79 साल की उम्र में देहांत हो गया है। एशियन खेडां च सोने का तमगा जेतू ते अर्जुन पुरस्कार नाल सन्मानित श्री सिंह ने अपने शानदार करियर दौरान 5 बार ओलंपिक में भारत की नुमाइंदगी की। वह भारतीय ओलंपिक एसोसीएशन के सबक सकत्र जनरल भी सन और भारतीय अंतरराष्ट्रीय खेड प्रशासन में कई महत्वपूर्ण अहुदों पर रहे। नैशनल राइफल एसोसीएशन ऑफ इंडिया ने उन्होंने देहांत से सोग प्रकट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के वक्-वक् हिस्सों में पै रही भयानक गर्मी दरमियान लोगों को सावधानी बरतने की अपील की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उन्होंने पानी पीते रहन और जदों भी बाहर निकलन तो अपने नाल पानी लैके जाने की अपील की है। गर्मी कारण वधदियां मुश्किलों बारे श्री मोदी ने कहा कि अजिहे मौसम में संवेदनशीलता बहुत वड्डी सहायता बन सकती है। उन्होंने किसी भी प्यासे व्यक्ति को एक गिलास पानी जरूर पिलाने लिए कहा। उन्होंने सारे अपने परिवार के अजीजों के संपर्क में रहन और उन्होंने हाल चाल पुछते रहने की भी अपील की। उन्होंने लोगों को पंछियों और जानवरों का ध्यान रखने की सलाह देंदिया घर बालकोनिया छत्तां दुकानों या दफ्तर के बाहर पानी का कोई बर्तन रखने की भी अपील की। इस दौरान पिछले कई दिनों तो अत की गर्मी का सामना कर रहे पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ की आने वाले दिनों में चंगी खबर है। चंडीगढ़ स्थित भारतीय मौसम विभाग ने मौसम में महत्वपूर्ण राहत की भविष्यवाणी करदे कल तो मई के अंत तक तेज़ बारिश गरज चमक नाल कुछ थावां ते गड़ेमारी ते 60 तों 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार नाल तेज़ हवावां चलण का येलो ते ओरेंज अलर्ट जारी किया है। अज पंजाब विच फरीदकोट 46.1 डिग्री सैलसीयस नाल सब तो गर्म स्थान रहा ते हरियाणे के रोहतक विच वध तों वध तापमान 46.6 डिग्री सैलसीयस दर्ज किया गया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई प्रतिनिधि पी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की सख्त आलोचना की है। उन्होंने पाकिस्तान से सरहद पारों दहशतगर्दी को जारी रखने का इल्जाम लाया तो चेतावनी दी है कि भारत विरुद्ध दहशतगर्द गतिविधियों को स्पॉन्सर करने लिए उसनों नतीजे भुगतने पैणगे। श्री हरीश ने यह टिप्पणियां संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देशों के सिद्धांतों को बरकरार रखने और संयुक्त राष्ट्र केंद्रित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूत करने के विषय पर एक खुली बहस दौरान की। परिषद को संबोधन करदे भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि पाकिस्तान ने अपनी स्थापना तो ही दहशतगर्दी हिंसक कट्टरवाद और भारत विरोधी गतिविधियों लगातार समर्थन दिता है। इनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट ने अज सवेरे तिरुवनंतपुरम में सबक मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के निवास स्थान समेत कई थावां ते छापेमारी की है। राजभर में 10 तों वध थावां ते जांच चल रही है। आईपीएल क्रिकेट में अज न्यू चंडीगढ़ विखे एलीमीनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स नाल हो रहा है। सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीत के पहला गेंदबाजी करने का फैसला किया है। जेतू टीम का मुकाबला शुक्रवार को दूजे क्वालीफायर में गुजरात टाइटन्स नाल होएगा। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेडिया जाएगा। अंत में चुनावी खबरें एक बार फिर सुन लो। आर्थिक मामलों बारे कैबिनेट कमेटी ने जनतक वंड प्रणाली PDS नूं आधुनिक बनाने की योजना नूं मार्च 2031 तक जारी रखने की प्रवानगी दे दी है। सर्वोच्च अदालत ने चोण कमिशन वालों करवाई गई वोटर सूचियों की विशेष तीबर सोध SIR प्रक्रिया की वैधता नूं बरकरार रखा है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अज NEET UG 2026 पेपर लीक मामले में 3 होर लोगों को गिरफ्तार किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश की तरक्की लिए उत्तर पूर्वी खेत्र का विकास बहुत जरूरी है। आईपीएल क्रिकेट में आज न्यू चंडीगढ़ विखे एलीमीनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स नाल हो रहा है। इस दे नाल ही खबरों का बुलेटिन खत्म होंदा है। साडा अगला बुलेटिन भल के सवेरे 8:30 पर होएगा। नमस्कार।
2: अस आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले 7:40 हो रहे हैं। हुण पेश है समाचार समीख्या।
3: नमस्कार। पेश है हफ्तावारी समाचार समीख्या। लेखक ने सीनियर पत्रकार जितेंद्र पम्मी, वाचिका

साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रुतबे से जितने बड़े अधिकारी हैं लेकिन दिल के उतने ही छोटे हैं। जेब से पर्स निकालते ही उनका दिल बैठने लगता है। जब कभी भी चाय आदि की तलब होती है तो किसी न किसी का चेहरा तलाशने लगते हैं। सभी उनसे कतराते भी हैं लेकिन इनकार करने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि ऑफिस में उनका रुतबा बहुत बड़ा है। ऑफिस बदल कर दूसरे स्थान चला गया। वह जगह उनके घर से काफ़ी दूर थी। बस में जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी क्योंकि बस में टिकट लेनी पड़ती थी, इसलिए उन्होंने पड़ोसी का साइकिल लेकर जाने का फैसला किया। साइकिल क्या, बस नाम की साइकिल थी। जब चलने लगी तो ऐसे आवाज़ आने लगी जैसे चारा काटने की मशीन चल रही हो। साइकिल का कोई ऐसा पुर्जा नहीं था जिस पर जंग ना लगी हो। प्रभु दयाल जी भी कहाँ कम थे। उनके सिर पर पैसे ना खर्च करने का भूत सवार था। साइकिल की गड्डी पर कागज रखा और चल पड़े। चलने के समय साइकिल इतनी आवाज़ देने लगी कि सभी लोग डर कर स्वयं रास्ता छोड़ने लगे। प्रभु दयाल जी गुनगुनाते जा रहे थे। दफ्तर के लिए देरी हो रही थी इसलिए उन्होंने साइकिल की रफ्तार तेज कर दी। दफ्तर के पास पहुंचते ही रास्ते पर पड़ा पत्थर उन्हें दिखाई नहीं दिया। साइकिल पत्थर से टकरा गई। प्रभु दयाल जी एक तरफ गिर पड़े, साइकिल दूसरी तरफ लुढ़क गई। साइकिल का धड़ तीसरी ओर लुढ़क गया। अब वे लगे आंसू बहाने। चपरासी को भेजकर साइकिल के पुर्जों को इकट्ठा किया और शाम को रिक्शा में डालकर घर पहुंचे। यानी कि एक रुपये की बचत के बदले उन्हें कई सौ रुपये खर्च करने पड़े, यानी कि सिर मुड़ाते ही ओले सहन करने पड़े उन्हें। प्रभु दयाल जी दिल के तो दरिया दिल हैं लेकिन खर्च करते समय वही दिल सिकुड़ जाता है। दरअसल उन्हें माया से ज़्यादा ही मोह है। उनके मित्र की बेटी की शादी थी, प्रभु दयाल जी को निमंत्रण तो देना ही था। उनके मित्र से गलती से या बदकिस्मती से सपरिवार लिखा गया। प्रभु दयाल जी ने इस शुभ अवसर को हाथ से ना जाने का दृढ़ संकल्प कर लिया। घर के सभी सदस्यों को तैयार रहने का नोटिस दिया गया। प्रभु दयाल जी ने मन ही मन सोचा, शगुन तो देना ही है, फिर शर्म किस बात की। इसी बहाने दूसरे लोगों से मेल हो जाएगा और परिवार के लोग भी अच्छे खाने का लुत्फ ले लेंगे। विवाह के रोज़ प्रभु दयाल जी जल्दी ऑफिस से छुट्टी कर आ गए थे ताकि समय पर तैयार होकर विवाह में शामिल हो सकें। बच्चे भी खुशी खुशी तैयार हो रहे थे। बीवी ने भी पुराने गोटे वाली साड़ी निकाल कर पहन ली। सभी सज धज कर घर से चल पड़े थे। विवाह स्थल पर पहुंचकर प्रभु दयाल जी ने वहां घूम रहे बैरों की ओर ज़्यादा ध्यान दिया, अपने मित्र की ओर देखा भी नहीं। जल्दी से कुर्सियों पर बैठकर बैरों को इशारा करने लगे। उधर लड़की के पिता समझे कि प्रभु दयाल जी शायद उन्हें बुला रहे हैं। वह सभी को छोड़कर उनके पास पहुंच गए। प्रभु दयाल जी को शर्मो शर्मी शगुन के पैसे निकालने पड़े। इधर जेब के खाली होते ही पेट में चूहे नाच कूद करने लगे। अब तो उनके लिए एक एक पल गुजारना भी मुश्किल हो रहा था। स्वयं बैरे को पकड़ कर ले आए, अपने दोनों हाथों को भर लिया और बच्चों को भी अपनी प्लेट भरने का इशारा कर दिया। जो भी बैरा उनके पास आता वह उसे निराश नहीं करते। समोसे और बर्फी का तो कोई उन्होंने हिसाब किताब ही नहीं रखा। इतने में कॉफ़ी लेकर बहरा पहुंच गया। अब उसे वो कैसे निराश करते। उन्होंने फैसला कर लिया था कि स्वयं दुखी हो सकते हैं लेकिन बैरे को निराश नहीं करेंगे।

गर्मा गर्म कॉफ़ी का प्याला उठाया और शुरू हो गए। अभी एक दो घूंट पिए ही होंगे कि एक नवविवाहित लड़की उनकी तरफ बढ़ने लगी। पहले तो समझे किसी और को मिलने आ रही होगी, लेकिन वह तो उनकी ओर ही बढ़ती आ रही थी। एक तरफ मुंह पर कॉफ़ी का नाद लेने लगे, लड़की ने पास आकर कहा, अंकल जी नमस्ते। प्रभु दयाल जी डर से ऐसे खड़े हुए जैसे कोई बड़ा अफसर अचानक चेकिंग के लिए आ गया हो। एक बार चश्मा साफ किया, फिर उतारा, फिर लगाया, लेकिन समझ में नहीं आया, बेटी मैंने पहचाना नहीं। कलाशो माँ की बेटी हूँ। प्रभु दयाल जी मानी मान कहने लगे, फिर यहाँ क्या करने आई हो? अच्छा, तुम्हारी शादी कब हुई? पिछले महीने। ये मेरे हस्बैंड हैं, इनके चाचा की बहन की शादी है। इधर पत्नी धीरे धीरे मेरे बाजू को पकड़ रही थी। प्रभु दयाल जी समझ कर भी ना समझ बन रहे थे। आखिर पत्नी को कहना ही पड़ा, इधर आकर बात सुनना। दूसरी तरफ पहुंचते ही वह गरज उठी, क्या बातें ही करते रहोगे, लड़की को शगुन नहीं डालोगे? काहे का शगुन? अरे हमारी बेटी लगी, कल को कलाशो मिली तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? तुम तो मुंह अपना मत दिखाना, तुम्हें मस्करी सूझ रही है। जल्दी से शगुन डालो और घर चलो, बहुत देर हो गई है। अच्छा रोटी खाकर चलेंगे, देरी तो हो ही गई है, वो बाद में देखेंगे, पहले शगुन डालो। प्रभु दयाल जी ने पर्स के एक कोने में संकटकालीन कुछ रुपये रखे हुए थे, उन्हें निकाला और शगुन देकर विदा ली। रुपयों के जेब में से जाते ही भूख ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया। प्रभु दयाल जी के पेट में के सभी चीज़ें हजम हो चुकी थी। उनके सामने तरह तरह की सब्जियों से भरे डोंगे नज़र आने लगे, उनका मुंह पानी से भर गया। उन्होंने परिवार सहित खाने की मेज़ पर हमला कर दिया, खुद प्लेट में लिया, परिवार को दी। सभी ने प्लेटें ऐसे भर ली जैसे मुद्दत के बाद खाना खाने को मिला हो। पेट में खाना ऐसा ढूंसा जा रहा जैसे बोरी में अनाज डाला जा रहा हो। इसका कारण ये था कि प्रभु दयाल जी को शगुन पर शगुन डालना पड़ रहा था, वे अपने सभी पैसे पूरा करना चाहते थे। प्रभु दयाल जी जितना कंबल को छोड़ना चाहते थे, कंबल उतना ही उसे नहीं छोड़ रहा था। वे जितना पैसे कम खर्च करना चाहते थे, उतने ही ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे थे। अब उन्होंने विवाह और पार्टियों पर जाना भी कम कर दिया था, क्योंकि वहाँ पर एक बार नहीं अनेक बार लेने के देने पड़ चुके थे। ऑफिस की ओर से उन्हें एक क्लर्क की नियुक्ति का काम सौंपा गया। उन्होंने बहुत सोच समझकर काम करने का निर्णय लिया ताकि इससे कुछ फायदा हो सके। सरकारी इंटरव्यू लेने के पश्चात उन्होंने गैर सरकारी पूछताछ शुरू कर दी। प्रभु दयाल जी को जब मालूम हुआ कि उसका पिता सिनेमा घर में काम करता है, तो उन्होंने उस लड़के को रखने का फैसला कर लिया। वह सोचने लगे, कम से कम मुफ्त में फिल्म देखने को तो मिल जाएगी। प्रभु दयाल जी का दिमाग तरह तरह की योजना बनाने लगा। कुछ दिनों बाद प्रभु दयाल जी ने उस लड़के को दफ्तर में अपने पास बुलाया। और बेटा कैसे काम चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। कोई तकलीफ तो नहीं तुम्हें? जी नहीं, कोई भी तकलीफ हो तो मुझे बताइएगा। बेटा एक काम था। हाँ जी बताइए। मेरे परिवार के लोग पिक्चर देखना चाहते हैं। अच्छी बात है, टिकटों का इंतज़ाम करना, वह हो जाएगा। कौन से दिन पिक्चर देखना चाहेंगे? इसी शनिवार को। ठीक है, मैं अपने पिताजी को बता दूंगा, आप पहुंच जाना। शनिवार को प्रभु दयाल जी परिवार सहित सिनेमा घर पहुंच गए। वहाँ लड़का पहले ही से ही खड़ा था, वह उन्हें अंदर ले गया। उन सभी को बालकोनी में बिठा दिया गया। कुछ देर बाद खाने के लिए चीज़ें और कोल्ड ड्रिंक भी उनके पास पहुंचा दी गई, इसलिए लड़के ने पहुंचाई ताकि उसकी नौकरी जल्द से जल्द पक्की हो जाए। सभी ठंडा पी रहे थे और स्नैक्स खा रहे थे। इतने में हाल में अंधेरा छा गया।

0: और पिक्चर शुरू हो गई। अंधेरे के साथ साथ सन्नाटा बिछाया। अचानक किसी ने प्रभु दयाल जी के कंधे पर हाथ रखा और वह चौंक कर पूछा, क्या बात है? टिकट? कौन सी टिकट? सिनेमा की। वह लड़का कहाँ है? कौन लड़का? जो हमें छोड़ गया था। आप बाहर आइए। प्रभु दयाल जी दुखी मन से बाहर आ गए। इधर परिवार के मेंबर पिक्चर देखकर हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। प्रभु दयाल जी दूसरी तरफ सफाई देकर मैनेजर को शांत कर रहे थे। आप टिकट दिखाएं वरना जुर्माना होगा। जुर्माना सुनते ही प्रभु दयाल जी का पूरा शरीर पसीने से तर हो गया। वे गड़गड़ाने लगे। 250 रुपये की बजाय 500 रुपये देकर उन्हें छुटकारा मिला। वह लड़का अपने पिता साथ गायब हो गया था और प्रभु दयाल जी के परिवार पिक्चर को देख रहे थे। इधर प्रभु दयाल जी ने भीषण प्रतिज्ञा कर ली थी, अब जो मर्जी हो जाए कभी भी ऐसा काम नहीं करना, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से खजूर में आकर अटकना पड़ जाए।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी वार्ता प्रोग्राम में प्रेम विज की व्यंग्य वार्ता आसमान से गिरा खजूर में अटका। असि आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुण तुसी समात फरमाओगे मकबूल पाली की आवाज़ गज़ल।

और संध्या के साथ मैं जया भारती। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। योजना पर 25,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय

0: ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। कहा, यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देती है। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। और भारत 2027 एशियाई रिले और 2028 एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रेमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद लोगों को समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक तथा प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था।
3: असम में समान नागरिक संहिता विधेयक का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं विभिन्न धर्मों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समान कानूनी ढांचा लागू करने का प्रावधान किया गया है। विवाह संबंधी प्रावधानों के तहत विधेयक में एक विवाह की व्यवस्था अनिवार्य की गई है तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य विधानसभा में समान

नागरिक संहिता पारित होने पर असम की जनता को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा का स्थापना दिवस से ही संकल्प रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी के और लू के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। एक रिपोर्ट।
3: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्यक्षेत्र में उठा सकते हैं।
4: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
3: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उधर राजस्थान में भी राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: दिन और रात के बढ़ते तापमान से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन पर असर पड़ा है। दिन के समय गांवों और शहरों में सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित हो गई है। विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से गर्मी से निपटने के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न संस्थाएं भी ठंडे पेय का वितरण कर लोगों को राहत पहुँचाने के जतन में जुटी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की भी अपील की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज सभी न्यायाधीशों से अपील की कि वे भीषण गर्मी को देखते हुए मामलों की सुनवाई ऑनलाइन करें। न्यायालय ने कहा कि वह इस संबंध में न्यायिक निर्देश जारी नहीं कर सकता। न्यायालय दिल्ली में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए सभी अदालतों में ऑनलाइन कार्यवाही करने के निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार द्वारा पूर्व प्रभावी 28% GST को बरकरार रखते हुए इसे वैध बताया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ नहीं है बल्कि उन्हें आपूर्तिकर्ता माना जाना चाहिए और उन पर वस्तु तथा सेवा कर GST लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद

को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का 1 डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का 1 शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही 1 अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upssconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश की उन्नति के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास बेहद आवश्यक है। आज गांगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण का मार्ग बताया और विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने विचारों, नवाचारों और आपसी विश्वास के जरिए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। और खेलों में म्यूनिख में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग में विश्व रिकॉर्ड कायम किया। फाइनल में ईशा ने पूर्व विश्व चैंपियन मिरोस्लावा मिंचेवा और कोरिया की शीर्ष खिलाड़ी जीन यांग को हराकर पहला स्थान हासिल किया। डेरिन वेनेकैंप दूसरे और मिरोस्लावा मिंचेवा तीसरे स्थान पर रहीं। उधर न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 4 विकेट पर 211 रन बना लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 97 रन की पारी खेली। भारत ने एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरेवाला ने आज इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में जबकि चंडीगढ़ एशियन रिले 2028 की मेजबानी करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक PDS योजना के विस्तार को मंजूरी दी। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, UCC लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। और भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Centre approves extension of Sarthak PDS scheme to modernise public distribution system with outlay of over 25,500 crore rupees. Severe heat wave conditions to continue over central and northwest India during next 2 to 3 days. Prime Minister Narendra Modi urges citizens to take care of vulnerable

0: reforms through technology in public distribution system, the Smart PDS system, under the umbrella scheme Sarthak PDS. We'd like to begin with a short bite we have of the Union Minister of Railways and Minister of Electronics and Information and Broadcasting, Mr. Ashwini Vaishnaw, who is just going to, without all the jargon, just tell us what really are the three reforms and just to give another holistic perspective.
1: आज की कैबिनेट में एक ऐसा फैसला लिया गया है जो कि देश के 80 करोड़ नागरिकों को प्रभावित करता है। आप सब जानते हैं कि आज हिंदुस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चल रहा है। फूड सिक्योरिटी से जुड़े जो विषय हैं, उन सब के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आज उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने वाली जो व्यवस्था है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसमें बहुत बड़ा एक फैसला लिया गया है, वो है सार्थक पीडीएस स्कीम। सार्थक पीडीएस स्कीम करीब 25,000 करोड़ का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य में एक जो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट बियर करने में दिक्कत आ रही थी राज्य सरकारों की। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने फैसला लिया है कि उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे इस प्रोग्राम के तहत। दूसरा, जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उन फेयर प्राइस शॉप्स में डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, एक लंबे टाइम से वो स्टैटिक था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी इसमें आज फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला लिया गया, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: सो लक्ष्मी, हियर वी आर हियरिंग द मिनिस्टर, यू नो, टॉक अबाउट लाइक प्रेसिंग अ रिफ्रेश बटन, इंक्रीजिंग रिम्यूनरेशन, मेकिंग श्योर दैट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इज यूज्ड, एंड बेसिकली ऑल द एम्स टू सी दैट द मनी गोज टू द राइट पीपल। In terms of the scale, financial and logistical, do you think that somewhere sustainability is very, very critical because it affects the last mile, you know, the common man?
2: The scale is huge, and India is the only country in the world where such a large scale welfare scheme is being implemented. And annually 500 lakh metric tons of food grains are transported across the country. And this, you know, moves from center to state and within the state to districts. And there are nearly 5,35,000 fair price shops, which we call ration shops, through which the food grains are distributed to 80 crore people. It's not a small number. And managing such a big capacity requires technology, and also people who are operating these fair price shops, they also need some kind of margin or remuneration for them to sustain, considering the kind of inflation we have. So that's the idea, like the support that government gives in assisting these dealers to operate these ration shops efficiently. If they are better remunerated, they will function efficiently. That's been the long-standing demand, that their margins are low and they want it. And this scheme helps them some increase in the remuneration for them. And apart from that, the scheme also talks about technology that is there, and also fair price shop, that support is there. And especially the grievances, you know, the grievances, AI grievances, if anyone has issues regarding PDS distribution or anything, they not got any, their quota of, everything can be addressed. And if it is AI driven, the efficiency of addressing those issues will be faster and smarter.
0: Right. In fact, you're on point absolutely to talk about grievance redressal. The minister has also spoken about this and has also mentioned what is going to be the financial gain due to the use of technology, which now the government is looking forward to reaping. Let's listen to that.
1: पूरी स्कीम से जो बेनिफिट होंगे, सबसे बड़ा तो एलिजिबल बेनिफिशरीज आइडेंटिफाई होंगे, दूसरा सिटीजंस का सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, तीसरा किसी की भी ग्रीवेंस हो उसको प्रॉपरली रिड्रेस कर पाए। एक जो फाइनेंशियल गेन होगा इस लॉजिस्टिक्स के पूरे रीऑर्गेनाइजेशन से और टेक्नोलॉजी यूज करने से, कॉस्ट ऑफ मूविंग रादर मूवमेंट ऑफ ग्रेन्स विल रिड्यूस ऑलमोस्ट 15-50%। लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट में 280 करोड़ रुपए की एनुअल सेविंग हो, और कार्बन एमिशंस बिकॉज ऑफ लेसर मूवमेंट ऑफ द फूड ग्रेन्स, कार्बन एमिशंस विल 35%. ये सारे इसमें बेनिफिट होंगे।
0: So Lakshmi, it's a huge program, and yes, of course, equity and inclusivity are the key pillars on which this is based, and food security, of course. But in terms of sustainability, how do you see that we can make this more sustainable? Because it was actually a bridge reform that was brought in, but it is

0: चर्चा का विषय है।
1: सीमाएं सिर्फ नक्शों पर खींची गई रेखाएं नहीं होती, ये किसी देश की पहचान होती हैं, उसकी सुरक्षा, उसकी संस्कृति और उसके भविष्य की सबसे मजबूत दीवार होती हैं। लेकिन जब इन्हीं सीमाओं को पार कर अवैध घुसपैठ देश के भीतर प्रवेश करती है तो सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं रह जाता, सवाल उठता है जनसंख्या संतुलन का, सामाजिक ढांचे का, रोजगार, संसाधनों और राष्ट्रीय पहचान का।

0: बदलती जनसंख्या तस्वीर भारत के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को प्रभावित कर रही है। क्या सीमाओं से शुरू होने वाली ये चुनौती अब शहरों और गांवों तक पहुंच चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले वर्षों में ये भारत की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता के लिए गंभीर संकट भी बन सकती है? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। हमारा आज का विषय है जनसंख्या परिवर्तन का सामाजिक आर्थिक ढांचे पर प्रभाव। आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर और सीमा सुरक्षा की चुनौतियों को बेहद करीब से देखने वाले पूर्व बीएसएफ प्रमुख और असम के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी नमस्कार।
2: नमस्कार
0: प्रकाश जी। आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो सबसे बड़ी चुनौती इस समय भारत के सामने है वो दूसरे देशों से आए लोग हैं। दो तरह के लोग हैं, एक शरणार्थी हैं और दूसरे घुसपैठिए हैं। इसको लेकर जो हमारे बॉर्डर स्टेट हैं वहां पर कई तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है। क्या लगता है, चूंकि आप खुद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के प्रमुख रह चुके हैं, असम एक ऐसे राज्य

0: नमस्कार।
1: प्रकाश जी, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो सबसे बड़ी चुनौती इस समय भारत के सामने है वो दूसरे देशों से आए लोग हैं। दो तरह के लोग हैं, एक शरणार्थी हैं और दूसरे घुसपैठिए हैं। इसको लेकर जो हमारे बॉर्डर स्टेट हैं वहां पर कई तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है। क्या लगता है, चूंकि आप खुद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के प्रमुख रह चुके हैं, असम एक ऐसे राज्य के आप DGP थे जहां पर इस तरह की बहुत बड़ी समस्या है, कैसे देखते हैं आप इसे भारत के नजरिए से?
0: देखिए, भारत के नजरिए से तो बहुत साफ है और अलग अलग समय पे बड़े बड़े हस्तियों ने इस विषय पे रोशनी डाली है कि ये देश की सामाजिक ढांचे के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए और देश की सुरक्षा के लिए, तीनों ही दृष्टिकोण से यह बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ा खतरा है। घुसपैठिए जो है आज से नहीं, ये स्वतंत्रता के बाद से, इंडिपेंडेंस के बाद से ही शुरू हो गया था। पर यह है कि इसकी प्रक्रिया अगर हम 1971 के बाद देखें, 1971 में बांग्लादेश बन गया, तो उसके पहले जो कुछ उत्पीड़न हुआ था पाकिस्तान आर्मी द्वारा, उस समय आप जानते हैं लाखों की तादाद में बांग्लादेशी आए थे और यहाँ पे उन्होंने शरण ली थी। बाद में बहुतों को वापस भेजा गया, कुछ गए, शायद कुछ नहीं भी गए होंगे। परंतु 1971 के बाद भी ये समस्या ऐसा नहीं है कि इसका समाधान हो गया। हम लोग ये समझते थे कि अब बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हो गया और भारत के सहयोग से हुआ है, तो अब हिंदू वहां पे सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे, मुस्लिम तो वहां पे रहेंगे ही। परंतु बहुत सारे कारण ऐसे हुए जिसकी वजह से ये घुसपैठ की समस्या बराबर बनी रही। सबसे बड़ा कारण जो था आर्थिक था। वो बांग्लादेश तो बन गया पर उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो इतनी बड़ी जनसंख्या को सबको एम्प्लॉयमेंट दे सके, सबको रोजी रोटी की व्यवस्था हो सके। नतीजा ये हुआ कि आर्थिक कारण से बहुत भारी संख्या में 1971 में बांग्लादेश के बनने के बाद भी यहाँ पलायन होता रहा, लोग आते रहे सीमा पार से और जितने बॉर्डरिंग स्टेट से वहां पे बढ़ते गए। इस समस्या से सारी सरकारें अवगत थी। आपको याद होगा कारगिल युद्ध के बाद चार टास्क फोर्सेस बनी थी बॉर्डर की समस्या देखने के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी की, डिफेंस की, इंटेलिजेंस की, और चारों टास्क फोर्स बड़े हाई पावर्ड बॉडीज थी। इसमें एक बॉर्डर मैनेजमेंट वाली जो बॉडी थी वो माधव गोडबोले उसका नेतृत्व कर रहे थे, जो भारत सरकार के गृह सचिव थे और बड़े योग्य IAS अधिकारी थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो अगस्त 2000 में प्रस्तुत की, और उस रिपोर्ट में ये लिखा कि हर वर्ष करीब 3 लाख बांग्लादेशी भारत में घुसपैठ कर रहे हैं और इस समय वर्तमान में यानी 2000 में उनकी संख्या 1 करोड़ 50 लाख है। ये 2000 की बात है, उसके बाद भी बढ़ता ही रहा होगा। आज की तारीख में 3 करोड़ हो गया हो, 3.5 करोड़ हो गया, कुछ कहा नहीं जा सकता। अलग अलग समय पर भारत सरकार ने इसका अलग अलग एस्टिमेट दिया है। 2001 में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना था। ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने चारों टास्क फोर्सेज के रिपोर्ट को इवेल्युएट किया था, उसका आकलन किया था, और इन्होंने भी बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठियों को होना देश की सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है। फिर बाद में आ जाइए 2005 में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला गया, सोनोवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस था एक 2005 में। उसमें उन्होंने कहा था कि दिस इज ए डेमोग्राफिक एग्रेशन, और एक्सटर्नल एग्रेशन में इसको उन्होंने क्लासिफाई किया था, ये एक्सटर्नल एग्रेशन है ऑन इंडिया, और कहा था इसके लिए भारत की संप्रभुता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो ये समस्या आज से नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है। और अगर आप और पहले जाना चाहें तो 1998 में जब जनरल सिन्हा आसाम के राज्यपाल थे, तो उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 8 नवंबर 1998 में एक रिपोर्ट भेजी थी जिसमें लिखा था कि असम में जो घुसपैठ हो रही है उससे जनसंख्या में जो परिवर्तन हो रहे हैं, हो सकता है कि कालांतर में, मतलब बहुत कुछ वर्षों बाद, बांग्लादेश ये मांग करे कि असम के जो सीमावर्ती मुस्लिम बाहुल्य प्रदेश हैं इन्हें बांग्लादेश में मिला दिया जाए क्योंकि ये मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो ये तो स्थिति है, ये आज से नहीं, कम से कम 1998 से बराबर चेतावनी हमको मिल रही है। अब 26-27 साल हो गए हैं। वर्तमान सरकार को इस बात का श्रेय तो हम देंगे कि इन्होंने इस समस्या की नोटिस ली है और मोदी जी ने अपने इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में कहा है कि एक डेमोग्राफिक कमीशन बनाएंगे, तो इस समस्या को गंभीरता से उसको स्टडी करके अपने रिकमेंडेशन देगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई अवसरों पर कहा है कि घुसपैठिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है।
2: जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है, और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है। तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है, उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें, उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में

0: चारित सूत्र निश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।
1: जी हां, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन की घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2025 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी और अब न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नवेलकर सेवानिवृत्त समिति के अध्यक्ष होंगे। जनगणना आयुक्त के अतिरिक्त 3 विशिष्ट विशेषज्ञ श्री दुर्गा शंकर मिश्रा सेवानिवृत्त IAS, श्री बालाजी श्रीवास्तव सेवानिवृत्त IPS और डॉक्टर शमिका रवि समिति के सदस्य होंगे और गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव भी समिति के सदस्य सचिव होंगे। ये समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आवश्यकता पड़ने पर गृह मंत्रालय समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 15 अगस्त 2025 को घोषणा की थी उच्च स्तरीय कमेटी की, अब उसका गठन हो गया है और घुसपैठियों के बुरे दिन की शुरुआत भी इसी के साथ हो गई है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: भारत सरकार ने ये तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में अकृत्रिम बदलाव नहीं होने देंगे। ये जो जनसांख्यिकी का बदलाव करने का षड्यंत्र है, इसको सीमा सुरक्षा बल ने रोकना है। और आज मैं बड़ी शांति से निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए।
1: प्रफुल्ल जी, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि सीमावर्ती जिलों और देश के कुछ चुनिंदा महानगरों में अचानक आई इस जनसांख्यिकी बदलाव के संकेत जो मिल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को ये प्रभावित कर रहा है?
3: जी निश्चित, वैसे तो ये अचानक नहीं आया है, लेकिन समस्या के रूप में अचानक उसको अभी देखा जा रहा है। जैसे हमने हाल ही में देखा नोएडा में अचानक से एक इरप्शन हुआ मूवमेंट के रूप में, और बहुत सारे सोसाइटीज में क्रिमिनल एक्टिविटीज में जब भी नाम आता था तो शुरू में इसके बारे में चर्चा जरूर होती थी लेकिन कोई एक्शन नहीं होता था। हमको ये ध्यान में रखना चाहिए, अभी IMDT एक्ट 1983 में बना, उस एक्ट का नाम ही था इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल। इसका मतलब पहली बार तो समस्या उस समय से शुरू कम से कम मानी गई कि इलीगल माइग्रेंट्स है। अब इसमें दो तरीके के अलग अलग थे, एक जो 1971 से पहले या 1971 के बाद, फिर 1990 के दशक में भी 92 के बाद खास करके अयोध्या के आंदोलन के रिएक्शन में वहां पे जो मंदिर गिरा गया, और केवल हिंदू ही नहीं हिंदू बुद्धिस्ट वहां की सो कॉल्ड जिनको हम माइनॉरिटीज बांग्लादेश के संदर्भ में कह सकते हैं, ऐसे लोग भारत में उनको शरण लेनी पड़ी, जिनके लिए CAA जैसा प्रावधान करना पड़ा। लेकिन दूसरा एक बहुत बड़ा वर्ग था जिसने इलीगल इमिग्रेंट्स की या इलीगल माइग्रेशन की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी इसके आधार पर खड़ी कर दी। प्रकाश सिंह जी ने जैसे बताया कुछ कारण तो पर्यावरणीय कुछ कारण आर्थिक भी रहे होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं आप यदि इंटरनेशनल इंडेक्स निकाल लो तो बहुत सारे पैरामीटर्स में असम के सीमावर्ती जिले या बंगाल के सीमावर्ती जिले उनकी तुलना में बांग्लादेश की इकोनॉमी उस समय बहुत अच्छा कर रही थी। तो ऐसे में उनको क्या माइग्रेट होने की जरूरत पड़ी? मुझे लगता है कि इसके पीछे आर्थिक और पर्यावरणीय एनवायरमेंटल कारणों की वजह से, क्योंकि कुछ हिस्से ऐसे हैं बांग्लादेश के जहां पे बाढ़ की स्थिति आती है और वहां से माइग्रेशन होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे एक सोची समझी राजनीति थी, एक सोची समझी रणनीति भी थी। काउंटरफिट करेंसी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क, जब कालियाचक की पुलिस चौकी को जलाया गया था बंगाल में तो उस समय उजागर हुआ था, ये साफ साफ दिखाता है। या इलीगल जो आर्म्स का ट्रेडिंग है उसका एक इम्पोर्टेंट रूट रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग का ये एक इम्पोर्टेंट रूट रहा है। यही रास्ता है जहां म्यांमार से बांग्लादेश में गए हुए रोहिंग्या रेफ्यूजीज भी सीधे आकर उसी रूट से कोई जम्मू कश्मीर तक कोई हैदराबाद तक पहुंच गया। वो यदि रेफ्यूजी थे तो वो वहीं पे शरण ले सकते थे, उनको जम्मू कश्मीर तक जाने की क्या जरूरत थी? किसने पहुंचने के लिए उनको मदद की? उनके कार्ड्स भी बन जाते थे वहां, बॉर्डर क्रॉस करने से पहले उनको सारे आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट्स बनाने की प्रक्रिया एक चलाने का प्रयास शुरू हुआ, और उसके बहुत सारे नेटवर्क भी भारत के अन्य शहरों से एक्सपोज हुए। क्या हुआ दुर्भाग्य से 1980 के बाद, मुझे याद है उस समय ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट पार्लियामेंट में था 2005 में शायद, और उस समय वो लेफ्ट गवर्नमेंट को और बुद्धदेव भट्टाचार्य को घेर रही थी, और उस समय वो पूछ

0: रही थी कि कब तक इन इलीगल माइग्रेंट्स को वोट बैंक बनाकर अपने लिए पोसोगे। दुर्भाग्य से वही ममता बनर्जी बाद में वही नीति आगे बढ़ाने लगी। तो सामाजिक ताना बाना बिगड़ता है, वहां की सांस्कृतिक स्थिति खराब होती है, वहां के रिसोर्सेस पर अतिरिक्त भार पैदा होता है और ये इलीगल एक्टिविटीज को बढ़ावा भी मिलता है। तो एक समग्र दृष्टि से आंकड़े अलग अलग होंगे। क्वेश्चन ये है कि पहली बात, किस कारण से इसको बढ़ावा मिला, दूसरा उसको रोकने की, तीसरा जो भारत में आ गए हैं उनको आइडेंटिफाई करने की। तो डिटेक्शन इज द फर्स्ट स्टेज, एक्सेप्टेंस एंड डिटेंशन जब तक डिटेक्ट नहीं होंगे उसके बाद तो बाकी सारी प्रोसेस आएंगी कि उनको वोटर्स लिस्ट से डिलीट करना है या डिपोर्ट करना है, ये तो बाद की स्टेज है। उनको वर्क परमिट्स भी दिए जा सकते हैं, लेकिन कम से कम आइडेंटिफाइड हो कि
1: जी बिल्कुल,
0: विदेशी मूल का नागरिक है, बिना पासपोर्ट के आया है और हमारे पास इसका एक ठोस डेटा है। और पूरे विश्व भर में ये होता है, उसमें भारत को अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हमने यदि बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये दो अलग अलग बॉर्डर्स पार्टीशन के बाद एक्सेप्ट किए हैं, तो वैश्विक नियमों के अनुसार उनको भारत में आना है तो वीजा लेकर ही आना चाहिए, लीगल तरीके से ही आना चाहिए। इलीगल इन्फिल्ट्रेशन उसका रास्ता नहीं हो सकता। तो इसके नेटवर्क को डिसमेंटल करना, ये राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर भी एक महत्वपूर्ण विषय है। और मुझे लगता है आने वाले समय में ये जो समिति बनी है वो उस दिशा में 1 साल के अंदर समग्र रिपोर्ट भी देगी और इसके आधार पर नीति भी बनेगी।
1: जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि शरणार्थी और घुसपैठियों को अलग अलग तरह से देखना चाहिए, क्योंकि दोनों के साथ अलग तरह की चुनौतियां हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: शरणार्थी और घुसपैठिया दोनों को एक पेज पर रखकर नहीं सोचना चाहिए। जो हमारे संविधान को जानते हैं, जो हमारे इतिहास को जानते हैं, हमारे देश की राजनीतिक इतिहास को जानते हैं, उन्होंने कम से कम ये गलती नहीं करनी चाहिए। हमारा संविधान बहुत स्पष्ट है, घुसपैठ कर आते हो, अलग अलग उद्देश्यों से आते हो तो आपको जरूर घुसपैठिए का लेबल लगेगा और वो लगाना चाहिए शासन में। फिर कुछ लोग दलील करते हैं कि अगर वो भारत में ही रहना चाहते हैं तो हम क्यों सीमित कर दें। कुछ सीमित नहीं करते हैं, इसके लिए भी कानून है। किसी भी धर्म का व्यक्ति एप्लीकेशन करे और एप्लीकेशन करके वैध तरीके से पासपोर्ट लेकर वीजा लेकर आए, हम उनके क्रेडेंशियल देखकर उनको नागरिकता देंगे, ये रास्ता खुला ही है। मगर आप अवैध तरीके से घुसपैठ करोगे तो सीमाएं पोरस नहीं हो सकती, सीमाओं से घुसपैठ नहीं होनी चाहिए और उनको संभालना भी चाहिए।
1: प्रकाश जी, चूंकि इन चुनौतियों को आपने काफी करीब से देखा है और अक्सर देखा जाता है कि सीमा पार करने के बाद जो घुसपैठिए हैं वो स्थानीय आबादी में घुल मिल जाते हैं, सुरक्षा बलों और स्थानीय राज्य पुलिस या खुफिया एजेंसियों के बीच जो तालमेल है उसको आप कैसे देखते हैं इस समस्या के निराकरण में?
3: देखिए, ये तालमेल तो बहुत जरूरी है, पर मेरा अपना अनुभव यह है कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज है अगर वो डिटरमिंड है तो इसका बहुत तरह से उपाय है। मैंने एज आईजी बीएसएफ पंजाब कुछ ऐसा काम किया है जिसको 25 साल तक तो उसको गोपनीय रखा मैंने, उसके बाद उसकी किताब में मैंने खोल कर रख दिया। बहुत सारे भारी बांग्लादेशी जो थे, भारी मुसलमान बांग्लादेश से चलते थे और वो पंजाब में आ जाते थे और पंजाब में गुरुद्वारों में लंगर खाते थे, फिर जब उनको मौका मिला तो बॉर्डर पार करते थे। अब मेरे जाने के पहले बीएसएफ क्या करती थी, उसको बॉर्डर पे रोकती थी, उनको पंजाब पुलिस को हैंडओवर करती थी, पंजाब पुलिस 2-4 दिन रखते थे, उसके बाद कहते थे हम आतंकवाद से लड़ें कि इनको कलकत्ते पहुंचाएं, ये छोड़ दो इनको, फिर थोड़े दिन बाद फिर वो वापस जा रहे हैं। तो मैंने अपने जिम्मेदारी पे बिना किसी होम मिनिस्ट्री के सैंक्शन के चिदम्बरम साहब से जब मैंने पूछा तो उनका यू विल बी डूइंग दिस एट योर ओन रिस्क, आई कैन नॉट परमिट दैट ऑफिशियली। मैंने अपने कहा जितने लोग हैं इनको अपने बीएसएफ के कैंप्स में रात भर रखो और जब अंधेरी रात हो तो इनको सीमा से पार से इनको पाकिस्तान भेज दो। मैंने कम से कम 25-30 हज़ार आदमी तो भेज दिए। इसका उपाय है, हर आदमी अपने लेवल पे काम कर सकता है। मैंने पर इसका ढिंढोरा नहीं पीटा, कोई इनाम नहीं मांगा, इसका ढोल नहीं बजाया, चुपचाप ये काम हो गया। फिर 25 साल बाद मैंने कहा कि मैंने इस तरह का काम मैंने किया था। पर यह है कि अभी भी इस समस्या का देखिए कुछ निदान हमें ढूंढना पड़ेगा। कुछ सुझाव तो गोडबोले साहब ने अपने कमेटी की रिपोर्ट में दे रखा है, मैं कहूंगा कि उस रिपोर्ट को फिर से अध्ययन किया जाए सरकार द्वारा, और जिन समस्याओं के लिए ये डेमोग्राफी कमीशन बन रहा है उन समस्याओं पे गोडबोले साहब ने बहुत गहन चिंतन किया है। इसके अलावा देखिए, अभी जैसे प्रफुल्ल जी ने कहा उनको हमें डिटेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करके उसके बाद उनको डिपोर्ट करना है। अब डिपोर्टेशन में दिक्कत आ सकती है, बांग्लादेश उसको नहीं मानेगा तो उसका क्या करना होगा ये हमें बाद में देखेंगे। पर अगर मान लीजिए एक संख्या कोई आपने रखी है जो होल्डिंग सेंटर्स बनाए हैं, उनको कहिए कि भाई अगर तुम हिंदुस्तान में रहना है तो हम तुम्हें रहने देंगे पर तुम्हें अपना सिटीजनशिप कार्ड या आधार कार्ड तो सरेंडर करना पड़ेगा और तुम्हें एक बांग्लादेश का एक कार्ड दिया जाएगा कि तुम बांग्लादेश के नागरिक हो, इस देश में तुम्हें 2 साल रहने की

0: काम करने की इजाजत दी जाती है। 2 साल बाद फिर हम इसको रिव्यू करेंगे कि तुम्हारा क्या किया जाए। और पर इन आदमियों को जिनको ये बांग्लादेश का कार्ड दिया जाता है, ये हमारे आई कार्ड से रंग में फर्क होना चाहिए, केवल कार्ड को देख कर ही मालूम हो जाए कि ये बांग्लादेश का ये आदमी। और इस आदमी को 2 कंडीशन होनी चाहिए कि तुम हिंदुस्तान में रह सकते हो और अपनी जीविका उपार्जन कर सकते हो, परंतु तुम वोट नहीं दे सकते और कोई अचल संपत्ति नहीं खरीद सकते। ये 2 कंडीशन उस पर इम्पोज की जाए और उसको सख्ती से लागू किया जाए कि मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीदोगे और तुम्हारा नाम इलेक्टोरल लिस्ट में नहीं होगा। तो इसपे हमें थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन भी रखना पड़ेगा। और कालांतर में मैं कहता हूं कि इस पे हमें बांग्लादेश से सख्ती से कहना पड़ेगा, देखिए आपके अभी भी हमारे पास 2.5 करोड़ 2 करोड़ जितना भारत सरकार का आकलन हो, इतने आदमी है, या तो आप इन्हें वापस लीजिए या इसके बदले में हमें जमीन दीजिए। और वो जमीन हम मांगे ठीक चिकन नेक के अगल बगल रंगपुर डिवीजन में मांगे, हमारा चिकन नेक की समस्या भी हल हो जाएगी और इन आदमियों को हम वहां बसाएं या जहां भी बसाएं, पर हम कहीं इतने आदमियों को रहने के लिए इतने वर्ग फुट हमें जमीन चाहिए, इतनी जमीन आपको देना पड़ेगा। तो सख्ती तो करनी पड़ेगी, या तो इनको वापस लो, तो एक स्ट्रिक्ट लाइन ऑफ एक्शन लेना पड़ेगा हमें, और उसकी भी शायद नौबत कालांतर में आएगी। पर यह है कि इस समस्या का हमें निदान ढूंढना है, वरना ये तो हमारे ऊपर बोझ है आज की तारीख में।
1: जी प्रफुल्ल सर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो अवैध रूप से जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जब स्थानीय श्रम बाजार यानी लेबर मार्केट में शामिल होते हैं, तो रोजगार, सब्सिडी, राशन और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे सीमित सरकारी संसाधनों पर इसका जो असर पड़ रहा है, वो एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए चुनौती है, और वो कितनी गंभीर समस्या बनते जा रही है भारत जैसे देश में जहां की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है।
2: देखिए, आज की भाषा में जैसे कहा जाता है कि डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, और डेमोग्राफी इज डेस्टिनी ये मोर रिलेवेंट हो जाता है जब आपकी डेमोक्रेसी हो, क्योंकि उस डेमोक्रेसी में आपको सरकार चुनने का भी अधिकार मिल जाता है और उस सरकार से दिए हुए योजनाओं का लाभ लेने का भी। मैं उस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले और एक बिंदु मैं श्रोताओं के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं।
1: जी
2: 1983 में ये जो IMDT एक्ट बना, जनरल सिन्हा की रिपोर्ट में उस पर बहुत डिटेल में ये दिया था, और वेंकैया नायडू उस समय मंत्री थे, मुझे स्मरण है, शायद ठीक बता रहा हूं, तो उन्होंने पार्लियामेंट में उसको लेकर स्टेटमेंट भी दिया था, गोडबोले कमेटी ने भी उसका रेफरेंस लिया था। IMDT एक्ट में एक बहुत बड़ा लूपहोल था। IMDT एक्ट में जो इलीगल व्यक्ति जो आया है वहां से, उसको अपनी नागरिकता प्रूव करने का कोई भी बंधन नहीं था। जो कंप्लेन उसके विरोध में करेगा कि ये बाहर से आया हुआ है और ये भारत का नागरिक नहीं है, उस पर ओनस था कि वो ये प्रूव करे कि ये भारत का नहीं है। और ऐसे में भारत में स्वाभाविक रूप से मानसिकता होती है, और इसने भारत में कॉम्पिटिटिव वोट बैंक पॉलिटिक्स को जन्म दिया। शायद मुझे पता नहीं है जानबूझकर रखा गया था उस समय का, उसका क्या लॉजिक था, क्या कारण थे, लेकिन इसने इस समस्या को बढ़ाया। अब आपने जो पूछा कि सरकार की योजनाएं हो, चाहे वो खाद्यान्न से जुड़ी हुई हो या अन्य योजनाओं का लाभ हो, इन सबके लिए अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कौन होता है, जिसका हक ये मारते हैं? भारत का जो गरीब तबका है, उसके अधिकारों का, उनके रिसोर्सेस का एक तरीके से ये इलीगल माइग्रेंट्स जो है, जो रोजगार के नाम पर या अन्य किसी नाम पर आते हैं। मैं नहीं मानता रोजगार पर, भारत के लोग नहीं जाते क्या रोजगार के लिए बाहर? लेकिन क्या वो इलीगल बाउंड्री क्रॉस करके जाते हैं? बाउंड्री क्रॉस करके जाते हैं तो भी भारत उनको स्वीकार करता है। ऐसी कुछ घटनाएं बाहर के देशों में हुई तो हमने कहा कि भाई हम उनको, कोई भारत बढ़ावा नहीं देता है। तो हमको वही नीति हमारे पड़ोसी देशों के बारे में, या भारत और नेपाल के बीच में बहुत सारे लोग आते जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक प्रावधान बना हुआ है, एक आई कार्ड दिखाकर वो आते हैं, वर्क परमिट के नाते यहाँ पे रहते भी है। तो मुझे लगता है इसका जो परिणाम होता है वो स्थानिक संसाधनों पर होता है, सरकारी योजनाओं के लाभ लेने के कारण होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर होता है, और खास करके असम में जो समस्या आई, स्थानिक संस्कृति, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे जंगलों के, और अभी पूर्वोत्तर के बहुत राज्यों में ये आ रहा है, जहां पे भारत के सामान्य व्यक्ति को भी जाने के लिए एक परमिट लेना पड़ता है, इनर लाइन परमिट जिसको कहते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां पर आकर बैठ गए हैं, वहां के जंगल संसाधनों का नुकसान कर रहे हैं। तो ये हमारा मल्टीपल रिसोर्सेस का एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन भी है, उन पर स्ट्रेन भी है। तो मुझे लगता है कि ये भी डायमेंशन हमको, जब हम रिलीजियस इम्बैलेंस तो है ही, वो इम्बैलेंस क्रिएट होता है जिसके कारण समाज में एक तनाव पैदा होता है, लेकिन सांस्कृतिक और आर्थिक साधनों के आधार पर भी ये घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या सीमावर्ती क्षेत्र में बनी हुई है, जिसके कारण इस समिति का गठन करना पड़ा है।
1: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने भी कहा है कि बाहर से

0: हुए लोग देश की समस्या के साथ साथ असम के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
1: आई थिंक चैलेंज हैज बिकम मोर ग्रेव दैट डेमोग्राफिक पैटर्न इज चेंजिंग फास्ट। टुडे ऑलमोस्ट 40% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन विल बी फ्रॉम दोज हु हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। लीगेलिटी इज अपार्ट, टुडे असमीज is marginalized in our own land, our culture is marginalized in our own land, economy is fast shifting to those people who were never associated with our culture and with our history. So the silence continue, but one good thing is that there is a collective spirit today to face the silence, and I am sure that our new generation will fight, will keep on fighting, and God will bless us, will survive.
0: प्रफुल्ल जी, आप बहुत समय से भारत के अलग अलग विषयों पर पैनी नजर रखते हैं। ये जो समिति बनी है और प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले के प्राचीर से इसकी घोषणा की थी, क्या लगता है कि इस समिति के बनने से क्या कुछ बदलने वाला है निकट भविष्य में?
2: देखिए, मुझे इसमें सबसे बड़ा जो बदलाव लग रहा है बंगाल की चुनाव के बाद, मुझे लगता है एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन से भी ज्यादा इसमें अलग अलग स्टेट्स की कोऑर्डिनेशन की बड़ी समस्या रहती थी। बांग्लादेश से एंटर कर रहा है असम में जा रहे हैं, असम से एंटर कर रहे हैं बिहार तक पहुंच रहे हैं या झारखंड तक पहुंच रहे हैं, और ऐसे में फिर एक राज्य दूसरे राज्य पर ये चीज झकेल देता था कि ये तो हमारी समस्या नहीं है, ये तो आपको रोकना है, और फिर ये वहां का राज्य एक केंद्र पर कि ये तो आपको बीएसएफ के लेवल पर हैंडल करना चाहिए, लेकिन बॉर्डर की जो लैंड है वो पोरस रखेंगे, उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे बीएसएफ को। तो ये सारा कॉम्प्लेक्स सिनारियो था। आज अभी राजनीतिक स्तर पर मुझे लगता है प्रधानमंत्री ये निर्णय ले पाए, उसमें एक महत्वपूर्ण कारण आज ये है कि इस सीमावर्ती क्षेत्र में झारखंड छोड़कर लगभग सारे हिस्सों में सत्ताधारी दल एक ही है, और या वो एनडीए का हिस्सा है या भाजपा से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में ये समन्वय ऐसे ही हुआ था। नक्सलवादी समस्या के बारे में तुरंत बॉर्डर क्रॉस करके चले जाते थे, और फिर छत्तीसगढ़ का ये कहता था नहीं मध्य प्रदेश की समस्या है, मध्य प्रदेश वाला कहता था तो उसने क्राइम तो हमारे यहाँ पे नहीं किया है, वो तो महाराष्ट्र भाग गया है। तो ऐसे में पहली मीटिंग जब की थी गृहमंत्री, मुझे याद है चारों राज्यों के गृहमंत्री और डीजीपीस को लेकर मीटिंग की थी। अब ये समन्वय संभव हो पाएगा केंद्र सरकार ने जब ये समिति बनाई है, तो मुझे लगता है समिति एक तो इसका समग्रता से अध्ययन करेगी, पिछले रिपोर्ट्स के आधार पर इसका एक जिसको हम कह सकते हैं क्लियर पिक्चर इसके कारण सामने आएगा। दूसरा, मुझे लगता है कि इसके समस्या के निराकरण के लिए भी नीतिगत सीधा सीधा एक मुझे लगता है कि क्लियर कट पिक्चर सरकार के सामने भी आएगा कि नीतिगत विषय में इसको आगे कैसे बढ़ाना है, और समन्वय के नाते कौन कौन सी एजेंसी इसकी क्या क्या भूमिका रहेगी, ये भी स्पष्टता इस समिति के गठन के कारण आने की संभावना है। तो आने वाले जैसे शब्द तीन चले, डिटेक डिलीट एंड डिपोर्ट, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम डिटेक्शन और आने वाले कालखंड में इसको फिर से और आगे ना बढ़े, ये इलीगल माइग्रेशन ना बढ़े, जो है उनको डिटेक्ट करके क्या करना है वो तो है ही, लेकिन वो ना बढ़े इसके लिए क्या हो, इसके लिए निश्चित रूप से हमको एक नीतिगत दिशा मिलने की संभावना इस समिति से बनेगी, यह मेरा विश्वास है।
0: जी हाँ, बिल्कुल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल अगर होगा तो इस चुनौती से पार पाया जा सकता है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
3: सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा कर हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते, हमने क्षेत्रीय सुरक्षा का राज्य सरकारों के साथ रहकर चिंता भी करना पड़ेगा और वो जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि सीमा से नजदीक 50 किलोमीटर के किसी भी गांव में कोई अवैध निर्माण होता है तो हम सिविल प्रशासन को सूचित करें, कलेक्टर को सूचित करें, एसपी को सूचित करें। हमारी जिम्मेदारी है कि 50 किलोमीटर की बॉर्डर तक के सभी गांवों में जनसांख्यिकी का परिवर्तन हो रहा है, कृत्रिम परिवर्तन हो रहा है, तो उसके प्रति सजग रहकर राज्य सरकार को आगाह करें।
0: प्रकाश जी, एक और सवाल आपसे समझना चाहेंगे कि 2014 के बाद इस समस्या को लेकर वर्तमान केंद्र सरकार ने बहुत सारी कोशिशें की हैं और उसी दिशा में इस समिति का गठन भी है, कैसे देखते हैं पिछले 12 वर्षों के मौजूदा सरकार के प्रयासों को घुसपैठियों और ये जो डेमोग्राफिकल चेंज है इससे पार पाने की दिशा में?
4: देखिये, समस्या की गंभीरता को समझा गया है, उसको स्वीकारा गया है और उसके निदान के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं, ये तो यहाँ तक तो सार्थक है। अब हमें अपनी लॉ एनफोर्समेंट मशीनरी से ये काम लेना पड़ेगा, और ये काम मतलब वर्तमान सरकार लेने में सक्षम है। उन्होंने नक्सलियों को कहा कि हम

0: 2026 तक खत्म कर दें, उन्होंने खत्म कर दिया। ठीक है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस समस्या के लिए भी उनको कुछ टारगेट रखना पड़ेगा और इसकी मंथली, ईयरली या क्वार्टरली कुछ चीज की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। हम पहले ये एस्टिमेट बनाए कि हर स्टेट में कितने कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उसके बाद हर स्टेट पे कहें कि इस महीने में आपने इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की, इनको कितने को डिटेक्ट किया, कितने होल्डिंग सेंटर में है, किनको डिपोर्ट करने के लिए क्या कार्रवाई की, इनका रेगुलर मॉनिटरिंग होनी पड़ेगी। इसमें सख्ती बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ कि वर्तमान सरकार करने में सक्षम है, इन्होंने नक्सल समस्या पे विजय पा ली है, तो इस समस्या का भी ये समाधान प्रभावी ढंग से ढूंढ सकते हैं। इसके लिए सख्ती करनी पड़ेगी और मैं समझता हूँ कि सरकार ये सख्ती कर सकती है।
1: प्रफुल्ल जी, कार्यक्रम के अंत में एक और सवाल बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि आज के दौर में जब सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया और फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क, आपको क्या लगता है ये घुसपैठ को बढ़ाने में कितनी भूमिका निभा रहे हैं?
2: देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि इसके जुड़ी हुई एक इकोनॉमी है। ये केवल फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क नहीं है, ये फेक करेंसी नेटवर्क है, ये ड्रग ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, इसमें आर्म्स के ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है और एक क्रिमिनल सिंडिकेट के रूप में ये काम करता है। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से जिम्मेदार है। और आज के जमाने में सोशल मीडिया इसको एम्पलीफाई करता है ह्यूमैनिटेरियन के नाम पर। जैसे ही ऐसी कुछ केसेस होती है, डिपोर्टेशन के लिए कुछ बात बढ़ती है, तो सोशल मीडिया में एक्टिविज्म चलता है, राजनीतिक कारणों से भी चलता है, कुछ धार्मिक कारणों से भी चलता है, कुछ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरसीज के द्वारा भी चलता है। तो ऐसे में एक बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी देश के लिए किसी भी इलीगल माइग्रेंट्स के विरोध में सख्त कदम लेना। और आज जब टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग एक अच्छा उपयोग हो सकता है गवर्नेंस में आइडेंटिफाई करने के लिए, चाहे सीसीटीवी कैमरेज के रूप में, चाहे सेंसर्स के रूप में, हम बहुत सारी चीजों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये सिंडिकेट्स डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मुझे लगता है कि जब अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज के बारे में सोचा जाएगा, तो इसके टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, मीडिया एक्टिविज्म के एस्पेक्ट्स और अन्य जो इससे जुड़े हुए सिंडिकेट और क्रिमिनल एस्पेक्ट्स है, इस पर भी मुझे लगता है ये समिति सोचेगी भी और उस पर कुछ उपाय योजना भी सरकार को बताएगी।
1: सीमाओं की सुरक्षा सिर्फ जवानों की जिम्मेदारी नहीं होती, ये पूरे राष्ट्र की सामूहिक चेतना का विषय है। जनसंख्या परिवर्तन और अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दे केवल आंकड़ों की बहस नहीं है, इनका सीधा संबंध देश की सामाजिक स्थिरता, आर्थिक संसाधनों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से है। आज की चर्चा ने यह साफ कर दिया है कि चुनौती केवल सीमा पार से आने वालों की नहीं, बल्कि उस सोच की भी है जो राष्ट्रीय हित से ऊपर व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ को रख देती है। जरूरत है सजग नीति की, मजबूत सीमा प्रबंधन की और सबसे बढ़कर जागरूक समाज की। प्रफुल्ल केतकर जी आपका, प्रकाश सिंह जी आपका, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: चर्चा का विषय है। असि आकाशवाणी ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ 10 ਵਜੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2031 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅੱਜ ਨੀਟ UG 2026 ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼, 5 ਵਾਰ ਦੇ ਓਲੰਪੀਅਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਨਰੇਰੀ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਰਾਜਾ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਜ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਸਮ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੂਨਕ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ

Sen fromaj peşini. अमन वर्मा, रमन वर्मा, दिव्यांश, डॉक्टर मदन लाल वर्मा, तेना दा पूरा ही वर्मा परिवार सानू फरमाइश भेज रहा जी डिस्ट्रिक्ट फाजिलका तो, पिंड चगुड़ी, जिला यमुनानगर तो रणधीर बांगड़, गुरमेजो, गौरव, परवीन, युगम ते वीरेन, गुलाम रोड, हरगोबिंद नगर, नवाशहर तो सुरेंद्र संधु, अनीता, रोहित, रितेश, शिक्षा, परीक्षित, संधु ते मैक्स सानू फरमाइश भेज रहे ने। अवतार सिंह पन्नू, पिंड मथौला, जिला गुरदासपुर तो फरमाइश भेज रहे ने जी। पद्मा टॉकीज, नेपानगर, मध्य प्रदेश तो सुदर्शन शाह, पलवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभी, आश्विन, मंगलाबेन ते रजेंद्र जी शाह, आहो सुनते इन्होंने सारे की मिली जुली फरमाइश ते मधुमती फिल्म का गीत लता मंगेशकर, मन्ना डे ते साथियों की आवाज़

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਸ਼ਰਮਾ। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में आज 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR कराने का अधिकार रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश

0: सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
1: असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। राष्ट्रपति ने ईद उल जुहा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि यह पर्व समर्पण, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर जरूरतमंद वरिष्ठजन और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

क्या बात है जी, क्या बात है। सो दोस्तों, तुसी इंजॉय कर रहे हो प्रोग्राम सौगात आकाशवाणी पंजाब ते अपने दोस्त कमल दे नाल। ते तुसी भी साढ़े वेले अपने फरमाइशी गीतां दी फरमाइश लैके पहुँच सकते हो। ते साडा नंबर है 01 8 1 23 41 171। ते वट्सएप दे जरिए भी तुसी अपने फरमाइशी गीतां दी फरमाइश कर सकते हो। साडा नंबर है 9465536077। पर एक

0: हेलो।
1: हेलो कमल जी, सत श्री अकाल।
0: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे ने ते केड़ी जगह तो बोल रहे ने?
1: ये मनजीत कौर बोल रही है दिल्ली तो। अच्छा
0: मनजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है, पूरे ढोल ढमके दे नाल स्वागत है।
1: जी,
0: हाँ जी,
1: बहुत बहुत धन्यवाद है।
0: धन्यवाद जी तुहाडा वी। ते दसो फिर केड़ा गीत सुनाइए जी। गीत बस एक दो मैसेज पढ़ लिए। सो कॉल करने लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लो जी, ये सानू मैसेज मिलिया पिंड हीरां वाली फाजिलका तो सुभाष गोदारा, विमल गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਰਹੰਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਰਹੇਜਾ, ਕਾਂਤਾ ਰਾਣੀ, ਚਰਨ ਰਹੇਜਾ, ਡੈਨੀ

0: हेलो
1: कमल जी, सत श्री अकाल।
0: सत श्री अकाल जी। कौन बोल रहे ने ते केड़ी जगह तो बोल रहे ने?
1: देश राज ड्राइवर, तहसील टोहाना, जिला फतेहाबाद, हरियाणा तो।
0: सो बहुत बहुत स्वागत जी, पूरे ढोल ढमके दे नाल स्वागत है।
1: थोड़ा ही बहुत बहुत धन्यवाद जी।
0: तो दसो फिर केड़ा गीत सुनाइए।
1: हर भजन मान दा ला दो जी, कल सुबह नो यार पता नहीं की होना।
0: क्या बात है, क्या बात है। लो जी, बस एक दो मैसेज पढ़ लिए फिर तुहाडी फरमाइश पूरी करते हैं। सो सानूं काफ़ी सारे मैसेजेस साडे दोस्तां मित्रां दे मिल रहे ने, और ये सानूं खैरपुरा मिसिज सिंध विलेज तो वल्डी वलीदाद खान, मुहम्मद सदीक, ये कहिंदे ने जी कोई भी सानूं मुहम्मद सदीक दा गाना सुना दिओ ते जरूर। मंडी हरजी राम मलोड़ तो नथू राम शर्मा, ललित शर्मा, इंदिराज शर्मा, सुरेश शर्मा, कोई भी गीत कहते सानू सुना दें तो जरूर आओ, फिर इंजॉय करते हैं गीत।

पल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन पले को मंदे। गुरमत अनुसार सब तो पहला खुदा दा परमात्मा दा नूर ही है जिसने समुचे जगत नू पैदा कीता। पहला उस करते ने चानन रचया ते फिर अपनी अपार शक्ति द्वारा सारे जीव जंत यानी प्राणियों की सिरजना कीती। जदों एक ही प्रभु की जोत तो समुचा जगत सारा आलम पैदा होया है तो फिर जात मजहब के भुलेखियां च पै के किसी नूं चंगा या माड़ा क्यों समझा जावे। परमेश्वर सबना का पिता है, सारे जीव उसे दी ही संतान हन। उस दी रजा विच रहण वाले, उस दी होंद नू मनन वाले अपना आपा तक वार दिंदे ने। एक पिता एकस के हम बारिक, तू मेरा गुरहाई, सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी, हर दर्शन देह दिखाई। सरवण करदे आं भाई अवतार सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वलों गायन कीता होया ये शब्द।

एक पिता एकस के हम बारिक, तू मेरा गुरहाई। सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी, हर दर्शन देह दिखाई। इस शब्द अगायन कीता सी पाई अवतार सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। सृष्टि दे आरंभ तो पहला केवल ओ अकाल पुरख ही सी, उस तो बाद उस दे नूर तो कुदरत दे पांत पांत दे जीव सिरजे गए। सब जीव एक समान हन, अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उप

0: अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले को मंदे। इस शब्द का गायन किया सी पाई निर्मल सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे आ इस शब्द की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी जगबीर सिंह।
1: प्रभाती अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। लोगा भरम ना भुल हो पाई, खालक खलक खलक मह खालक, पूर रहो सब ठाई रहाओ। माटी एक अनेक भांत कर, साजी साजन हारै ना कछ पोच। माटी के भांडे ना कछ पोच कुंभारै, सब में सच्चा एको सोई, तिसका किया सब कछ होई। हुक्म पछानै सो एको जानै, बंदा कही है सोई। अल्लहो अलख न जाई लखिया, गुड़ गुड़ दीना मीठा, कह कबीर मेरी संका नासी, सर्ब निरंजन डीठा। ये पवित्र शब्द भगत कबीर जी की पावन रसना तो उचारण किया होया है। प्रभाती राग की भगत बाणी विच श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के 1349 अंग दे उपर सुभाईमान है। प्रभाती राग की भगत बाणी विच भगत कबीर जी के कुल 5 शब्द हैं। पहले शब्द विच भगत जी ने परमात्मा के पवित्र नाम की महिमा दृढ़ करवाई है। कहत कबीर किल विख गए खीना, मन पया जग जीवन लीना। दूजे शब्द विच भगत जी दे समकाली ताकतवर धार्मिक लोकां दे टाकरे प्रति इनकलाबी बोलां दे राहीं कुछ सवाल पुछे गए हन। काजी अते पंडित दोवें ही धार्मिक शख्सीयतां भगत जी दे सवालां दे जवाब दे हन। काजी ताईं सवाल है, अल्लाह एक मसीत बस्त है, अवर मुल्क किस केरा। जे परमात्मा खुदा सिर्फ मसीत विच ही वसदा है, ता जो होर धर्म अते धार्मिक स्थान हन उत्थे कौन है। अगला सवाल काजी अते पंडित दोहां नूं सांझा है, दक्खण देश हरी का बासा, पछम अल्लाह मुकामा। भगत जी फरमान करदे हन, हिंदू मत मनदा है कि परमात्मा केवल दक्खण दिशा विच, अते इस्लामी मत मनदा है कि खुदा केवल पछम दिशा विच काबे अंदर ही वसदा है। भगत जी फिर दोहां नूं सांझे तौर ते कहा है, कहां उडीसे मज्जन किया, क्या मसीत सरनाए, दिल में कपट निवाज गुजारै, क्या हज काबै जाए। दिल विच कपट रख के परमात्मा नूं कित्यों भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगत जी परमात्मा बारे सनातन मत अते इस्लामी मत बारे विचार वटांदरे राहीं फरमांदे हन कि परमात्मा एक है अते सानू सारिआं नूं एक दी शरण विच पैणा चाहीदा है, तां ही साडा जीवां दा उधार हो सकदा है। परमात्मा भी एक है अते उस वल्लों पैदा कीते जीव जंत भी सब एक हन। अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। पहले पहल अल्लाह खुदा एक नूर ही है अते उस नूर तो ही कादर दी कुदरत सब जीव जंत पैदा कीते हन। जगत अंदर सृष्टि की रचना कीती है, ता फिर जातां रंगां नसलां धर्मां अते मजहबां दे भरम भुलेखे विच पै के किसी नूं उच्चा नीवा नहीं कहा जा सकता, मंदा अते चंगा नहीं कहा जा सकता। अगलियां पंक्तियां हन, लोगा भरम ना भुलो भाई, खालक खलक खलक मै खालक, पूर रहो सर्ब ठाई रहाओ। के ऐ दुनिया दे लोको,

ही बैठा, कटकट अंतर तुहै उठा, सभे साजी वाल सदायन, तुम किसे न दिसे बाहरा जियो। इस शब्द का गायन कीता सी भाई गुरमेल सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

साध बलिहार अमृत परवाथार अतुल भंडार पार पराही ते पराय अपर अपार पार अपनो पावन कार

सगल पवन तारे एक थे किए बिस्तारे, पूर रे ओ सर्ब में आप है निरारे, हर गुण नाही अंत पारे, जी जंत सब थारे, सगल को दाता एक है अलख मुरारे, आप ही तारण तारे, कुदरत है देखारे, बर्न चहन नाही मुख नाम सारे, जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसार।

0: तन मन तन मन तन तेरो प्राण एक है सूत है जहान कवन उपमा देओ बड़े ते बढ़ान जाने कौन तेरो पेओ अलख अपार देओ अकल कला है प्रभ सर्ब को तान जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसार एक जी क्या बखान है हां के बल बल बल बल सद बलिहा
1: निरंकार अकार अखल पूरन अविनाशी हर खवंत अनंतर निर्मल बेगासी गुण गावे बे अंत अंत एक तिल नहीं पासी जांको हो हे कृपाल सो जन प्रभ तुम्हें मिलासी तन तन ते तन जन जय कृपाल हर हर प्यो हर गुर नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दो थेरे हो तन तन ते तन जन जय कृपाल हर हर प्यो हर गुर नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दो थेरे हो
2: सत सत हर सत सत सते सत पणिया दूसर आनन अवर पुरख पौरातन सुनिया अमृत हर को नाम लैत मन सब सुख पाए जेहर सिन चाखियो तेजन तिपत

बहुड़ फिर जोन ना आए। कवन जोग कौन ज्ञान ध्यान कवन विदुस्त करिए सिद्ध साधक ते तीस कोर ते रकीम ना परिए ब्रह्म मालक सनकार से गुणंत ना पाए अगौ ग्यो नहीं जाए पूर सर्व रहो समाए जे काटी सिलक दयाल प्रभ से जन लगे भगते हर गुर नानक जिन परस्यो ते इत उत सदा मुक्ते।

0: सगल सृष्टि लगे बेतरो।
1: निर्मल नाम सुधा पर पूरन शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर गहर गंभीर अथाहत बड सुपर सदा सब बिदरत नागर संत।

ज्यो मछली बिन नीर बिनसै त्यो नाम बिन मर जाई। मेरे प्रभ किरपा जल देवहु हर नाई।

कृपा करहि ता हर गुण गावहि, हर रस अंतर पाई। नानक दीन दयाल पए है, तृष्णा सबद बुझाई।

तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालस जी के बोल बाले बोलो जी वाहेगुरु बोलो जी सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान वसाहा दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बोंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहेगुरु बोलो जी सिखां दा मन नीमा मत उच्ची मत पात दा राखा आप वाहेगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जीओ श्री ननकाना साहिब अते होर गुरद्वारियां गुर धामां दे जिन्ना तो पंथ नू विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभार दा दान खालसा जी नू बख्शो हे नमानिया दे मान नतानिया दे तान नियोटिया दी ओटा धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ आप जी दे पावन पवित्र अस्थान सच खंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर सबद चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वल्लों कड़ाह प्रसार भेटा कीता गया है तिन्हां दी अरदास समूह संगत अते टहलियां दी अरदास सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नू अपने दरों घरों सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना सोबो भावनावां पूरियां करनिया आप जी दे हजूर कड़ाह प्रसादी देग हाजर है दर परवान होवै परवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो सुख होवै नाम चित आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवन नानक नाम चढ़दी कला

बोड़ी साहब हुए दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसने हुक्म बनाए सी हुक्म मनया होवे प्रवान ता खसमे काम हल पाए सी खसमे भावे सो करे मनो चंदिया सो फल पाई सी तांदर गै पैदा जाए सी तांदर गै पैदा जाए सी।

0: जे महा का कर्म है कर्म पितरी दे, अगे बस सियाणी है पितरी चोर करे, वड्डिया है हाथ दलाल के मुसफी है करे, नानक अगे सो मिले जे खटे काले दे महला पहला।
1: जो जो रुसे नावनी आवे वार वार जुठे जुठा मुख वसै नित।